0: दादा को गुमराह ही पाया।
1: फहुम अला आसारिहिम युहरऊन,
0: सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते हैं।
1: वलकद वल्ला कबलहुम अक्सरुल अवलीन,
0: और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे।
1: वलकद अरसलना फीहिम मुन्ज़िरीन,
0: और हमने उनमें मुतनब्बे करने वाले भेजे।
1: फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुन्ज़िरीन,
0: सो देख लो जिनको मुतनब्बे किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ।
1: इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन,
0: हाँ खुदा के बंदगाने खास का अंजाम बहुत अच्छा हुआ।
1: वलकद नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून,
0: और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं।
1: वनज्जैनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम,
0: और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी।
1: वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन,
0: और उनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए।
1: वतरकना अलैहि फिल आखिरीन,
0: और पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया।
1: सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन,
0: यानी तमाम जहान में कि नूह पर सलाम।
1: इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन,
0: नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
1: इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन,
0: बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।
1: सुम्मा अग्रकनल आखरीन,
0: फिर हमने दूसरों को डुबो दिया।
1: वइन्न मिन शीअतिही लइब्राहीम,
0: और उन्हीं के पैरों में इब्राहिम थे।
1: इज जा रब्बहु बिकल्बिन सलीम,
0: जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए।
1: इज قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون,
0: जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूछते हो।
1: अइफ्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून,
0: क्यों झूठ बनाकर खुदा के सिवा और माबूदों के तालिब हो।
1: फमा ظنكم برب العالمين,
0: भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है।
1: فنظر نظرة في النجوم,
0: तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की।
1: فقال إني سقيم,
0: और कहा मैं तो बीमार हूँ।
1: فتولوا عنه مدبرين,
0: तब वो उनसे पीठ फेर कर लौट गए।
1: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون,
0: फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं।
1: मालकुम ला तन्तिकून,
0: तुम्हें क्या हुआ है तुम बोलते नहीं।
1: फराग अलैहिम ज़र्बन बिल यमीन,
0: फिर उनको दाहने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया।
1: फअक्बलू इलैहि यज़िफून,
0: तो वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए।
1: قال أتعبدون ما تنحتون,
0: उन्होंने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो।
1: والله خلقكم وما تعملون,
0: हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको खुदा ही ने पैदा किया है।
1: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم,
0: वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ फिर उसको आग के ढेर में डाल दो।
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين,
0: गरज उन्होंने उनके साथ एक चाल चलनी चाही और हमने उन्हीं को जेर कर दिया।
1: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين,
0: और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ वो मुझे रास्ता दिखाएगा।
1: रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
0: ऐ परवरदिगार मुझे औलाद अता फरमा जो सआदतमंदों में से हो।
1: फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम,
0: तो हमने उनको एक नर्म दिल लड़के की खुशखबरी दी।
1: फलम्मा बलग माहु सया कौल या

0: और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि बारे इलाहा शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है।
1: उर्कुब बिरिजलिका हादा मुग्तसलुन बारिदुन व शराब।
0: हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीरी।
1: वहबना लहू अहलहू व मिथलहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब।
0: और हमने उनको अहल वयाल और उनके साथ उनके बराबर और बख्शे, ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी।
1: वखुज़

उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां फिरे जाते हो।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: एक बार फिर से सामईन आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 92.6 फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशंस। और आज के इस प्रोग्राम में हम फिल्म के हवाले से बात कर रहे थे कि फिल्म की जो दुनिया है उसमें अपने आप को किस तरह मनवाया जाए, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है वो फिल्म के तलबा तलबात को किस तरह फैसिलिटेट कर रही है, किस तरह सब्जेक्ट्स हैं उनको निखार के बना के मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के लेक्चरार सर सैयद अली मज़ाहिर साहब। सर फिर से एक बार आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर बताइएगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी फिल्म पढ़ा रही हैं, तो यूसीपी जो है वो उनसे डिफरेंट किस तरह होती है? वो उनके पास भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनके पास भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी टीचर्स हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो यूसीपी का स्टूडेंट है, यूसीपी के जो फैसिलिटीज हैं वो डिफरेंट कैसे हैं उनसे?
2: ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल उन यूनिवर्सिटी से भी करना चाहिए जिन यूनिवर्सिटीज का फिल्म के हवाले से नाम ज्यादा लिया जाता है। मैं लाहौर की बात करूंगा, लेकिन हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट, उनसे मार्केट में अगर आप देख लें, एनालिसिस करवा लें, मैं आपको दे भी सकता हूँ फिगर जितना मेरे पास है, हमारा स्टूडेंट क्यों ज्यादा है, उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, जो हम पहले जिस पे बात कर चुके हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, और हम अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करते हैं।
1: एग्जैक्टली
2: ऐसा नहीं है कि हमारे फैसिलिटीज में अगर काम 10 साल पहले हुआ था तो हमारा इक्विपमेंट 10 साल पुराना ही है। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हम अपने बच्चे को वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, इस टाइम पे AI का दौर है फॉर एग्जाम्पल, तो हम जो मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो हम फिल्म के टीचर्स हैं, हम जब बैठते हैं आपस में तो हम यही कहते हैं कि अच्छा, हमने जो अपनी असाइनमेंट डिजाइन करनी है उसमें हमने बच्चे को कहना है कि AI का इस्तेमाल करो।
1: सही।
2: लेकिन AI का इस्तेमाल उस तरीके से करेंगे जहाँ पे उनको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप बच्चे को नॉर्मल एनालिसिस दे देंगे फिल्म करने का, तो वो तो ChatGPT करके आपको 2 मिनट में दे देगा, तो आपने एनालिसिस तो देना ही नहीं। अब आपने उनको AI, जब पता है आप मना भी करेंगे तो AI इस्तेमाल होनी है, तो आपने अपनी असाइनमेंट, अपनी चीजें उस तरीके से डिजाइन करनी है जिसमें आप AI इस्तेमाल कर भी लें तो आप कुछ नहीं कर सकते,
1: फायदा नहीं देगी।
2: या आप AI का ही असाइनमेंट देंगे, AI को इस्तेमाल करते हुए कुछ बना के लाओ, क्योंकि उसमें आपका दिमाग लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। तो ये इस तरह हम अपग्रेड कर रहे हैं। आई एम श्योर बाकी यूनिवर्सिटीज भी कर रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक रीजन है। जो दूसरा रीजन है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिस पे अभी तक यूनिवर्सिटीज ने नहीं सोचा, बाकी क्यों बाकी बच्चे यूनिवर्सिटीज के, नामवर यूनिवर्सिटीज के बच्चे बाहर जाते हैं, एक हद तक मार्केट में अच्छा करते हैं, एक हद उसके बाद डाई डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपको नजर आना कम हो जाते हैं, लेकिन यूसीबी का बच्चा आपको सस्टेन करता हुआ नजर आता है। उसका रीजन ये है कि हमारे जो फैकल्टी है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है, वो आपको दोनों महाजों के लिए तैयार करती है। कौन से दो महाज? पहला महाज वो है जो आपका प्रैक्टिकल महाज है, कैमरा कैसे चलाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, आपने बोलना कैसे है। मैं आपसे इस टाइम पे खाली फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मीडिया की बात कर रहा हूँ,
1: मीडिया की
2: मैं बात। बोलना कैसे है, आपका तलफ्फुज कैसे निकलेगा, मतलब जर्नलिज्म में या रेडियो की अगर हमको बात
1: करें, सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं।
2: आपकी छोटी फिल्म के हवाले से आपको तैयार किया जाता है कि आपको कैमरा कैसे करना है, आपने ऑपरेट, लाइटिंग कैसी होगी, 3-पॉइंट लाइटिंग क्या होगी, मतलब शॉट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। मैं अब उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकली महाज के लिए तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: जो दूसरा महाज है, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं तैयार कर पाती और हम कर देते हैं, वो है उनकी नॉलेज जो थ्रेटिकल है।
1: सही, बहुत गुड।
2: प्रैक्टिकल तो आपने उनको तैयार कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना एक अरसे के बाद डाई डाउन होना शुरू हो जाती है, बिकॉज जैसे हमने AI से बात शुरू की, उसका मकसद ही ये था स्टार्ट करने का कि आज AI है, कल कुछ और होगा। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे खिलाते जाएंगे, कैमरे पे, लाइटिंग पे, ठीक है आप खिलाते जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होगी। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो हम लोग बड़ी बड़ी लाइटें लेके जाया करते थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, 100-100 मेगावाट की, उससे भी बल्कि ज्यादा लेके जाए। आज आपके पास छोटी छोटी लाइट्स आ गई हैं, RGB लाइट्स आ गई हैं, पॉकेट लाइट्स जिनको कहा जाता है, बट इफेक्ट उनका वही है,
1: पोर्टेबल
2: लाइट्स आ गई हैं, रॉड लाइट्स आ गई हैं, ठीक है। आपका पहले हमें रिफ्लेक्टर्स और वो चीजें लगानी पड़ती थी, अब इनबिल्ट चीजें आना शुरू हो गई हैं,
1: शाइनिंग के लिए
2: पहले आपको वो थर्मापोल शीट लगानी होती थी, अब आपके साथ लाइटों के साथ चीजें आ रही हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये चीजें तब आपको समझ आएंगी जब आप थ्रेटिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो यूसीपी अपने बच्चे को खाली प्रैक्टिकल काम नहीं सिखाती, वो थ्रेटिकली भी बहुत स्ट्रांग करती है। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट का आपसे नाम लिया, फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ये सब्जेक्ट में मैं सिर्फ थ्योरीज पढ़ाता हूँ, फिल्म की क्या क्या थ्योरीज हैं, सिमोटिक थ्योरी क्या है, तो योनरा थ्योरी क्या है, फलाना थ्योरी, मतलब आप जो यूज नेम इट और वो थ्योरी का नाम फिल्म में मौजूद है, फेमिनिज्म थ्योरी क्या है फॉर एग्जांपल, तो मतलब थ्योरीज। तो अब बच्चे को क्या होता है कि जब वो मार्केट में जाता है ना, तो उसके पास आइडियाज होते हैं, आइडिया सिर्फ तब होते हैं जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्रेटिकल नॉलेज भी होगी।
1: होगा बिल्कुल, बहुत खूब। और हम तो फिल्म सिर्फ वैसे सामान देख लेते हैं, लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिएगा कि फिल्म के पीछे कितने बड़ी कहानियां होती हैं। फिल्म एक पूरी बाजाहर तो हमें नजर आती है कि एक पूरी वीडियो चल रही है, लेकिन उसके पीछे जो थेरीज होती हैं, उसके पीछे जो कहानियां होती हैं, उसको किस तरह बनाया जाता है, उसमें उन किरदारों को किस तरह आपके देखने वालों के दिल और दिमाग में उतार दिया जाता है, ये बहुत बड़ा फन है। और ये जो है यूसीपी के जो तलबा तलबात हैं उनमें भी खासा नजर आता है, उनके साझा कराम में भी नजर आता है, और फिल्म में जो होना चाहिए जान वो यहाँ पे डाली जाती है। सर हमने ये तो देख लिया कि स्टूडेंट्स आपने तैयार कर दिए, उनको सिखा दिया उनको, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी देना यूनिवर्सिटी का हक फर्ज होता है, उन पर जरूरत होती है, साथ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वगैरह, वो उसको उस सिलसिले को किस तरह तलबा तलबात को तक पहुँचाया जाता है अपॉर्चुनिटीज वगैरह यूसीपी की तरफ।
2: लेकिन यूसीपी इस मामले में भी सबसे आगे है, और हमारा डिपार्टमेंट भी मैं कहूँगा बहुत आगे है
1: फिल्म की दुनिया में।
2: जी जी, फिल्म की दुनिया में और मीडिया की दुनिया में, मैं दोनों बात करूंगा आपसे, बट फिल्म में भी मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव की वैसी बात कर रहा हूँ कि हम बहुत आगे हैं, हमारा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी इस टाइम पे भी आप नीचे ए लॉबी में जाएं तो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है।
1: yes.
2: ठीक है, शायद आपको मालूम ही होगा ये 2 हफ्ते पहले यूसीपी में प्रॉपर करियर कनेक्ट हुआ है।
1: जी जी,
2: उस करियर कनेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्केट जिसकी डिमांड थी वो मीडिया, मतलब फिल्म मीडिया या कंप्यूटर, ये 2 लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा थी, मतलब सबसे ज्यादा जो स्टॉल या बूथ कह लें जिनको, वो जो लगे थे वो हमारे मीडिया के लगे थे। तो ये यूनिवर्सिटी ने आपको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी कि आप ना चल के जाओ, पूरी पूरी कंपनी आगे बस चल के आ रही है कि आओ और हमें ज्वाइन करो। मैं आपको छोटा सा हमारी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना आप एनालिसिस करें मार्केट का, 80-85% चैनल्स में आपको यूसीपी का एलुमनाई या यूसीपी का बच्चा मिलेगा किसी ना किसी प्रोडक्शन में, या इवन कैमरे के आगे भी। मैं आपको सिर्फ अपने बैच की बात बता सकता हूँ, मेरे बैच में इस टाइम पे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिनके मुझे नाम पता है, जिस वक्त मशहूर बड़े बड़े चैनल्स में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी।
1: सही सही,
2: ठीक
1: सही,
2: है
1: सही।
2: तो ये तो मैं आपको अपने बैच की बात बता रहा हूँ, जब रिक्रूटमेंट ड्राइव इतनी ऑफन नहीं हुआ करती थी, अब तो मैं देखता हूँ कि यूसीपी के पेज पे हर वक्त रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ हो रही है, हर वक्त लगी होती है, और उसी वजह से हमारा जो बच्चा है वो हर जगह हर इंडस्ट्री में मौजूद है, वो फिल्म की हो, वो जर्नलिज्म की हो, या वो पीआर एडवर्टाइजिंग की हो। जहां तक आपने फिल्म की बात की मेरे से, हमारी जो इंडस्ट्री है फिल्म की, वो जाहिर है एक हमें चीज समझने की जरूरत है, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है।
1: ऐसा ही है बिल्कुल।
2: अभी हम फिल्म इंडस्ट्री तो बोल देते हैं, बट अभी वो इंडस्ट्री बनी नहीं है, अभी वो बच्चा है, इट्स अ बेबी। और दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप इस फील्ड में आके अपना नाम बना सकते हैं, बिकॉज एक फील्ड जब नहीं आती है ना तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं।
1: ऐसा ही है,
2: और जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं तो आपके पास मार्जिन बहुत होता है कि आप अपनी जगह बना सकें।
1: yes.
2: तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप बड़े सही टाइम पे फिल्म पढ़ें, आप पढ़ें सीखें और मार्केट में जाके अपना नाम बनाएं, बिकॉज एक बार ये जब इंडस्ट्री बन गई इंशाल्लाह और आपकी रेगुलर फिल्म्स आना शुरू हो गई, जैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखते हैं या हम हॉलीवुड में देखते हैं जहाँ पे एक एक महीने में 10 से ऊपर फिल्में आ रही हैं, फिर जरा अपनी जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको तब आपको कोई नई चीज लानी पड़ती है मार्केट में ना।
1: चेंज,
2: अभी आप कुछ भी ले आएंगे ना तो वो फिल्म चल जाएगी,
1: ऐसे ही है,
2: क्योंकि अभी लोग देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा वक्त है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए और अपना नाम बनाएं।
1: सही हो गया बिल्कुल, करियर कनेक्ट की आपने, और आपने बड़ी फ्रेश जो एग्जांपल्स है वो आपने हमें दी। सर बाकी फील्ड में भी आपने तो माशाल्लाह बहुत काम किया है, तो फील्ड्स के अंदर भी तो आपको यूसीपी के बच्चे नजर आते होंगे, उनको बाकी बच्चों से डिफरेंट समझते हैं, डिफरेंट लगते हैं, कुछ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है या एज इट इज, जिस तरह बाकी बच्चे?
2: बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है, वो उनके पास प्रैक्टिकल के साथ थ्रेटिकल नॉलेज होता है। ठीक है, जब वहां पे बात हो रही होती है ना कैमरे की, तब भी यूसीपी का बच्चा खड़ा होता है, जी मुझे पता है जी कैमरे का या लाइटिंग का या किसी भी टेक्निकल चीज का आप नाम ले लें, और जब वहां पे कोई थ्रेटिकल बात हो रही होती है, जैसे आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की कि एक फिल्म बनाना के लिए सिर्फ कैमरा लाइट्स या वो चीजें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड होता है, आप करेक्टर को बनाते हैं, स्टोरी को आप डेवलप करते हैं,
1: ऐसे ही
2: ये जो टीम होती है जब ये करती है, तो ये जो फिल्म का प्रोजेक्ट होता है ये उसके लिए बच्चे की तरह होता है, वो अपना बच्चे की जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, आप वैसे ही ख्याल रखते हैं उसका। तो वही वाली बात है कि यूसीबी का बच्चा या हमारे डिपार्टमेंट का बच्चा जब मार्केट में खड़ा होता है तो आपको नजर आता है ये यूसीबी का बच्चा है, क्योंकि इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्रेटिकल नॉलेज भी उतना ही होता है जितना मेरा ख्याल से किसी और यूनिवर्सिटी नामवर यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है। अगर आप सिर्फ एलुमनाई, हमारा जो मीटिंग होती है एफएमसी की एलुमनाई मीटिंग होती है, आप उसके अंदर आके कभी बैठे हैं तो आपको पता चलेगा कि यूसीबी का बच्चा क्या क्या कर रहा है। मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिल्म के हवाले से क्या क्या कर रहा है, डबिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, باہر کے بڑے بڑے سیزنز پاکستان میں آتے ہیں اور اس کی ڈبنگ یو سی پی کے بچے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسی وہ بات نہیں جو میں اپنے سے بول رہا ہوں, یہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. اگر آپ الومنائی میٹنگ میں ہیں, آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ملیں گے ایسے. ہمارے یو سی پی کے بچے ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, شارٹ کانٹینٹ جس میں آپ ریلس کانٹینٹ ہے یا وہ ہیں, آپ کو یو سی پی کے بچے ملیں گے. ٹاپ ناچ انفلوئنسرز اینڈ کانٹینٹ کریٹرز آپ کو یو سی پی کے ملیں گے, اور یہ اسی لیے ملیں گے کیونکہ یو سی پی نے آپ کو یہ فریڈم اور یہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں.
1: بالکل, تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا ہونا اور پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ تھیوری کا ہونا بہت ضروری ہے. جی سامعین, یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: वो इस फेस्टिवल की बैकबोन है, जान है, ठीक है। उसके अलावा हमारे डेफिनेटली जो हमारे डीन हैं, उस टाइम पे वो HOD हुआ करते थे, अब वो डीन है हमारे, तो उनकी इस फेस्टिवल में बहुत ज़ाहिर है एक नज़र आती है, इनकी काविश है, ठीक है। और इसी वजह से ये आज तक फिल्म फेस्टिवल मौजूद है, हर साल हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल भी होगा।
1: ये होता क्या है फिल्म फेस्टिवल, किस तरह अरेंज किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है?
0: जी फिल्म फेस्टिवल में इस तरह होता है कि जी फिल्म फेस्टिवल में हम पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से नहीं, हम पूरी दुनिया से फिल्म्स मंगवाते हैं।
1: सही।
0: और इसके अंदर कैटेगरी स्टूडेंट्स की होती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स कैटेगरी की फिल्म्स आती है हमारे पास। और खाली फिल्म्स नहीं होती हमारे पास, में दो और कैटेगरीज है, हमारे पास फिल्म की कैटेगरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी है, और हमारे पास म्यूजिक वीडियो की कैटेगरी है। और इन तीनों कैटेगरीज में हमारे पास आती है, पहले हमारी एक इंटरनल कमेटी है जो हमारी कोर टीम ही है बेसिकली, वो शॉर्ट डाउन करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है कि कौन सी फिल्म जो है वो मेजर ज्यूरी के पास जाएंगी। फिर एक ज्यूरी डिसाइड हुई होती है, फिल्म की अपनी ज्यूरी है, हमारे पास बड़े बड़े नाम यहाँ पे जज कर सके, सैयद नूर साहब भी यहाँ पे जज रहे हैं हमारे फिल्म फेस्टिवल के, म्यूजिक में जवाद अहमद साहब रहे हैं हमारे साथ, आजकल हमारे साथ हफीज ताहिर साहब मौजूद हैं ज्यूरी में, बड़े नाम मौजूद हैं, हमजा यूसुफ साहब जो इस टाइम पे मेरे ख्याल से सारे बड़ी बड़ी म्यूजिक वीडियोज पाकिस्तान की, इवन ISPR की जितनी है वो हमजा यूसुफ साहब के पास है, ठीक है, हमारे उसमें वो रहे हैं, ज्यूरी में रहे हैं। अब इस साल की क्या ज्यूरी होती है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, जाहिर है
1: कुछ सरप्राइज है,
0: कुछ सरप्राइज भी है जाहिर है, लेकिन जो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर शॉर्ट सिलेक्शन के बाद इनके पास जाती है, एंड फिर उसमें से ये top 3 चूज करके हमें दे देते हैं, और उनको फिर कैश इनाम तक दिया जाता है। बहुत कम फेस्टिवल्स हैं जिसमें इनाम कैश की सूरत में स्टूडेंट को दिया जाए।
1: सही, सही,
0: आप ट्रॉफी दे देते हैं, आप शील्ड दे देते हैं, आप यहाँ पे एक शील्ड के साथ कैश इनाम भी जाए, ताकि एक फिल्म अपकमिंग फिल्म मेकर की हौसला अफजाई भी हो, क्योंकि फिल्म मेकिंग सुनने में बड़ा लगता है कि फिल्म मेकिंग जी फिल्म बना दी, फिल्म में आपका बजट लगता है, आपका पैसा लगता है, तो आप हौसला अफजाई के साथ आपको ये भी आप कह देते हैं कि यार तुमने इतनी मेहनत की है, ये जाहिर उतना पैसा नहीं लेकिन ये हौसला अफजाई है कि तुम और मेहनत करो। तो फिल्म फेस्टिवल में हमारी है, और लास्ट फिल्म फेस्टिवल में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास, क्योंकि पांचवा फिल्म फेस्टिवल था तो हमने ये रखा था 5 international films। हमारे पास लास्ट फिल्म फेस्टिवल में 5 बाहर से फिल्में आई थी, जिसमें मैं आपको नाम, हमारे पास रशियन फिल्म आई थी, हमारे पास ईरानी फिल्म आई थी, हमारे पास ब्रिटेन UK की फिल्म आई थी, हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, जबकि उस वक्त हालात बड़े नासाज थे, फिर भी हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, इंडिया से, मतलब इंडियन फिल्म से मुराद है इंडिया से फिल्म आई थी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास फिल्म आई थी चेक रिपब्लिक से,
1: ओके,
0: ठीक है। और अभी भी हमारे पास एक फिल्म जो कुछ आ रही थी वो जाहिर है थोड़ी डिले हो गई, कोरियन फिल्म्स।
1: अच्छा अच्छा।
0: और वो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि आने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में हम अपनी इंटरनेशनल फिल्म्स की तादाद बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा फिल्म फेस्टिवल इतना फेमस हो चुका है कि लोगों को अब दिसंबर का इंतजार होता है कि दिसंबर आने वाला है, अब कब डेट अनाउंस होंगी और UCP का फिल्म फेस्टिवल किन डेट्स पे होगा, ताकि हम अपनी फिल्म सबमिट करें। तो ये एक UCP के फिल्म फेस्टिवल की बड़ी खासियत है कि हर साल करवाते हैं और हर साल बड़े से बड़ा करवाते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी आप देखेंगे कि पहले से बहुत बेहतर होगा।
1: बिल्कुल, अगर उस हालात में हमें वहां से आ सकती है तो इन हालात में तो हमें बहुत कुछ आ सकता है। और बिल्कुल छठा आई थिंक ये इवेंट है।
0: बिल्कुल इंशाल्लाह इस साल छठा होगा ये, और मैं जैसे पहले भी बोला है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 6 साल, मतलब छठा साल ही अब जो होगा, लगातार फिल्म फेस्टिवल करवाएगी।
1: बिल्कुल,
0: और ये ऐसा नहीं है कि ये प्लान होता है, ये पूरा साल की तैयारियां चलती हैं।
1: मैं बिल्कुल यही सवाल करने लगा था कि ये ऐसे तो नहीं हो जाता कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके पीछे जाहिर बात है कुछ तैयारियां शैयरियां भी होती हैं, वो तो जाहिर बात है मीडिया की जो हमारी टीम है, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के, जिनमें हमारे टीचर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं,
0: डेफिनेटली स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ये फेस्टिवल टीचर्स तो है ही है, देखिए बट ये फेस्टिवल पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट्स ना हो, क्योंकि ये फेस्टिवल करने का रीजन भी स्टूडेंट्स ही है। देखिए स्टूडेंट्स को एक फिल्म फेस्टिवल से क्या होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ। जब आपके पास दुनिया जहां से, या दुनिया जहां को चलने छोड़ दें, हम अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, आपके पास पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फिल्म्स आती हैं, तो खाली फिल्म्स नहीं आती हैं, आप उन फिल्म मेकर्स को 2 दिन इन्वाइट करते हैं, वो सारे फिल्म मेकर्स UCP में आते हैं। जब वो 2 दिन के लिए फिल्म मेकर्स UCP में आते हैं, तो फिल्म मेकर्स आपस में मिलते हैं, आपस में आइडिया शेयर करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, किसी का कैमरा वर्क अच्छा है, किसी का लाइटिंग वर्क अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई गाना अच्छा बनाता है, कोई गाता अच्छा है, तो आपस में कनेक्ट करके एक टीम बन जाती है और आपको एक फिल्म का माहौल मिलता है। तो एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल का खाली मकसद ये नहीं है कि आपने लोगों का काम दिखाना है, असल में आपने लोगों को मिलाना है।
1: बिल्कुल।
0: और जब वो मिलेंगे तो एक डेफिनेटली नई चीज प्रोड्यूस होगी और वो पहले से बेहतर होगी, बिकॉज एक टैलेंटेड लोग मिलकर काम करेंगे।
1: बिल्कुल, अगर एक बंदा करेगा तो उसमें मे बी के 2 टैलेंट्स हो, लेकिन जब 8-10 टैलेंट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो काम जो है उसकी दुनिया और पूरा पाकिस्तान जिस तरह बात की कि वो मुतरिफ होता है। तो सामिने कराम, आपने यहाँ पे सुना सर, बहुत बहुत

शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और सामईन इकराम, आपने यहाँ पे सुना कि किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट खास तौर पे फिल्म को लेके चल रहा है, किस तरह तलबा तलबात के अंदर फिल्म का रुझान बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म वो पिलर हो चुका है इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का, जिसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और बहुत बड़ी एक फील्ड बन चुकी है। तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रोग्राम से सीखा होगा और देखा होगा किस तरह के एक स्टूडेंट्स को एक स्टार्ट से लेकर फील्ड वर्क तक बना के पेश किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने तो इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है। और प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्तिताम को पहुंचता है, अपने मेजबान हमजा अहमद रजा को दीजिएगा इजाजत, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
4: علیک یا سیدی
3: UCP کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
4: سید الاولین والآخرین
3: FM 92.6.

0: वेलकम बैक सामई, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया सफर हिदायत एफएम 92.6। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब हैं। आज का मौजू मौशियती मामलात निकाह और तलाक के बारे में, तो हम उसी पर बात कर रहे थे कि आप फरमाते हैं डॉक्टर साहब के लड़का लड़की अगर राजी हैं लेकिन अगर उनके माँ बाप नहीं मान रहे, तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसपे दो खानदान का भी मिलाप है, तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ से खानदान की भारल होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, देखें गुजारिश ये है कि मैं एक सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूँ और ये होता है कि लड़के वाले या राजी नहीं है, लड़की वाले राजी नहीं है। इसमें भी भाई एक साइड तो आए ना, मतलब कोर्ट जाने की क्या जरूरत पेश आई। लड़के वाले राजी हैं तो भाई वो आए। देखें निकाह में सिर्फ एक रिलेशनशिप फिजिकल नहीं होता, खानदान बनता है। हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है। लड़की वाले नाराज हैं तो लड़के वाले तो आए उस ओकेजन में, एक निकाह करें। लड़की वालों की तरफ से क्या कोई भी राजी नहीं है, ये मैं मान नहीं सकता। चले मान लिया मैंने कोई भी राजी नहीं है, तो एक ऐसी सेरेमनी करें जिसमें लड़के वाले, मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कि लड़की वाले नहीं मान रहे हैं तो लड़के के वालिदैन जाके उनको मनाएं। नहीं मानते तो फिर लड़की कहे अपने वालिदैन को कि मैंने तो करनी है और मैं इस तारीख को कर रही हूँ। अच्छा, अब एक्सट्रीम सिनेरियो, लड़के वाले भी नहीं मान रहे, लड़की वाले भी नहीं मान रहे, अपनी कोशिश कर ली, और कोशिश कितनी है जाहिर है इसकी कोई हद तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन मुनासिब कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, दूसरों को कहना चाहिए, सिफारिश करनी चाहिए कि आप आके इनको समझाएं। लेकिन मैं एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को अज्यूम करता हूं कि यार बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, तो अब दोनों लड़का और लड़की अपने वालिदैन को बताएं कि जी हम थक गए हैं आपको राजी करने की कोशिश में, अब हम कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, यानी मैं उस राय को नहीं सही समझता कि वली की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं, आपने वली को समझाया, वली अनरीजनेबल हो गया।
0: वली से क्या मुराद?
1: यानी वो आमतौर पर वालिदैन या उसका सरपरस्त।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि इस्लाम में या कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस जो निकाह के इंस्टीट्यूशन में

0: अर्थ को एक दर्जा फौकियत दी गई है और कहा जाता है कि वो बहरहाल सरबराह भी है और उस जमन में वो बीवी की सरजनश भी कर सकता है कुछ के हैं। तो डॉक्टर साहब क्यों अल्लाह ने कहा दोनों को इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए, क्या पेश नजर था अल्लाह के? और डॉक्टर साहब वेरी एक्सक्यूज मी, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है स्पेशली फ्रॉम दी फीमेल जेंडर के जी ये तो बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन है।
1: क्वेश्चनिंग करनी चाहिए उन्हें, जाहिर है कि हमारा दीन अल्लाह का पैगाम है, ये हमें समझ में आना चाहिए। समझ में उन लोगों के आएगा कि जो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को डांट के दबाना नहीं चाहिए। उसके नतीजे में होता यह है कि फिर तहरे नौजवान दीन से दूर हो जाते हैं, बाती समझ में नहीं आती। कुछ लोग हैं जो मान लेते हैं, कुछ तबीयतें मिजाज डोसाइल होते हैं और कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं। तो गुजारिश ये है कि सवाल तो अच्छा है, उम्मीद है कि जवाब भी अच्छा होगा। देखिए गुजारिश ये है कि आपने अगर 2 घंटे के लिए पिकनिक मनाने जाना है तो शायद आपको किसी लीडर की ज़रूरत ही नहीं है, 2 घंटे गुजार के आ गए। वैसे बाय द वे हमारे दीन में तो इसकी भी हिदायत है कि आप सफ़र में भी जाते हैं 3 बंदे तो एक को अमीर बना लें, 2 भी हों तो एक अमीर हो। वजह क्या है? वजह ये है कि दुनिया में कोई इदारा, कोई गिरोह बगैर बॉस के, बगैर कप्तान के, बगैर प्राइम मिनिस्टर के, बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के, बगैर जनरल के चल ही नहीं सकता। दुनिया में कोई मिसाल दे दें। मैंने तो गुजारिश की कि किसी खेल के मैदान में आप जा रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टीम लेके आप कप्तान बनाते हैं, तो आप कोई मिसाल तो पेश करें ना किसी सीरियस कोशिश की जिसमें आप ये बताएं कि देखें ये सब मिलके कर रहे हैं। हाँ हल्ला गुल्ला कर सकते हैं आप, तूफान बदतमीजी आप कर सकते हैं जिसमें क्योस होगा, थोड़ी देर के बाद झगड़ा शुरू हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब मुझे कथा कलामी माफ, बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक होता है ना या इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, मतलब एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ हैज इक्वल से, देयर इज नो वन व्हिच स्टैंड्स आउट कि आप कहते हैं वो चेयरमैन है, इफ आई एम करेक्ट आप देखें।
1: नहीं वो चेयरमैन तो होता है सर, मतलब कोई ऐसा बोर्ड ऑफ गवर्नर तो नहीं है जिसमें चेयरमैन ही नहीं है, वो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ शादी में मियाँ बीवी मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, चेयरमैन जो है वो मर्द है। क्योंकि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब इतना सीरियस, इतना इम्पोर्टेंट इदारा वजूद में आ रहा है जितना कि खानदान होता है, आप यकीन जाने कि इससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट इदारा है ही नहीं,
0: ठीक है,
1: इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे लोग, तो फिर जाहिर है कि मुआशरे में खानदानी निज़ाम दरहम बरहम होगा। ये वो इदारा है कि जिसमें बच्चे पैदा होंगे, जिस इदारे में माँ बाप बूढ़े होंगे, तो ये इसका एक निज़ाम होना चाहिए। किसी भी मुल्क, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्पोर्ट्स की टीम, क्लब, किसी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता बगैर एक फर्द के जो अल्टीमेट जिम्मेदार है। तो जब मियां और बीवी मिलके एक खानदान का इदारा बनाएंगे तो ये सवाल पैदा होगा कि इनमें कौन जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया, 3 ही इम्कान थे ना, एक ये था कि अल्लाह ताला कहते कि शौहर है, दूसरा कहते बीवी है, तीसरा कहते कि निकाह के वक्त टॉस कर लेना। तो लेकिन ये कि कोई भी नहीं है, ये तो वो वाला मजाक है कि जो लोग करते हैं जो अल्लाह के पैगाम की रोशनी के बगैर खानदान को देखते हैं।
0: डॉक्टर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह निकाह को एज एन इंस्टीट्यूशन देखता है।
1: एब्सोल्युटली
0: ये मतलब हुआ। हाँ, ना डॉक्टर
1: मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, वेस्ट में आजादी के तस्वुर को उन्होंने एग्जैजरेट किया, चुनाचे आप ये देखें कि वो ट्रेंड है उनके यहाँ कि वो शादियां करते हैं, अव्वल तो करते ही नहीं है, करते हैं तो बच्चे नहीं पैदा करते। तो उनके नजदीक तो ये कोई एक फिजिकल रिलेशनशिप का एक तरीका है जो उन्होंने एक जायज तरीके से किया है। अगर इतना ही होता प्रॉब्ली सरबराह की तो फिर भी जरूरत होती, लेकिन चले मान लें कि इतनी सीरियस जरूरत ना होती, भाई इंशाल्लाह को 9 महीने साल बाद एक बच्चा आ जाएगा, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपने कहा यार जो करना है खुद ही करो, हमें नहीं पता, नहीं फिर आप एक क्योस क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप कंफ्यूजन को प्रमोट कर रहे हैं। आप यकीन जाने कि ठीक है बास खवातीन ये महसूस करती हैं, वो आप सवाल पूछेंगे मैं उसका भी जवाब दूंगा कि फर्ज कीजिए कि खातून ज्यादा एंटरप्राइजिंग है, कमा रही हैं, फिर क्या करें, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन खुदा ताला ने कहा कि 2 वजूहात की बिना पर मैं ये मर्द को जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये जिम्मेदारी है, एक वो खर्च करता है, यानी वो है कि जो खानदान की माली जरूरियात का जिम्मेदार बनाया गया है, तो इसलिए उसी के पास फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक मुतलकुल अनान कोई डिक्टेटर होगा, यानी फाइनल डिसीशन उसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरह मशवरा होगा, دونوں میاں اور بیوی کنٹریبیوٹ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی, اور اس وجہ سے بھی کہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی, اور ود ان بریکٹس اس میں امپلائڈ ہے بعض معاملات. ظاہر ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال میں تو کلیئر فضیلت ماں کو ہے, گھر کے باہر کے معاملات, فزیکل اسٹرینگ, یو نو, مشکلات کو فیس کرنا, نوکری پہ جانا, بزنس کرنا, اس کے معاملے میں جنرلی اسپیکنگ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت دی ہے, اس وجہ سے اس نے یہ ذمہ داری اس کو سونپی ہے, تو اللہ نے فیصلہ کر لیا.
0: اوکے ڈاکٹر صاحب, ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, سامعین ہمارے ساتھ رہے.

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ki duniya.
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
2: सुनना है तो इसे सुनो।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya, Ki Duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں. UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پروگرام فیکلٹی آور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں صبا اوان، اور آج فیکلٹی آف لا کی طرف سے ہم یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں محمد عامر کامران صاحب. ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ان فیکلٹی آف لا، اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیں وہ فیکلٹی آف لا میں جو ہیں وہ پروگرام کوآرڈینیٹر بھی ہیں. آج ہم نے ان کو اس پروگرام میں دعوت دی ہے تاکہ وہ ہمیں آ کے بتا سکیں کہ UCP میں فیکلٹی آف لا کس طرح سے کام کر رہی ہے، کیا کتنے پروگرامز ہیں جو وہ آفر کیے جا رہے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ فیکلٹی آف لا میں کروائی جاتی ہیں، اور اسپیسیفکلی اور اسپیشلی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے فیکلٹی آف لا کی جو کہ اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے فرام ادر فیکلٹیز، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے وہ کیا ہے. السلام علیکم سر.
5: وعلیکم السلام، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟
4: میں ٹھیک الحمدللہ. سر آپ بتائیں، خیریت سے ہیں؟
5: اللہ کا شکر الحمدللہ.
4: سر پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ یہاں پہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہیں وہ آپ آئے ہیں. سر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اپنا تعارف کروائیں.
5: سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا ادھر. میرا نام اصل میں آپ نے بتا چکے ہیں محمد عامر کامران ہے، اور میں فیکلٹی آف لا میں 2 سال سے ہوں ایز اے پرماننٹ اسسٹنٹ پروفیسر. اس سے پہلے میں ڈفرینٹ جو کالجز تھے، یونیورسٹیز تھے، اس میں پڑھاتا رہا ہوں، اور یہاں پر میں ایز اے کوآرڈینیٹر، اکیڈمک کوآرڈینیٹر اور ایگزامینیشن کوآرڈینیٹر دونوں طرح کام کر رہا ہوں.
4: جی ٹھیک ہے سر، آپ کے اوپر تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ایک تو کوآرڈینیشن ہے اور پھر پروگرام بھی، اور ایگزامینیشن کی کوآرڈینیشن اگر آپ کے پاس اکٹھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو اسکلس جو ہیں وہ بڑی اچھی ہوں گی. سر میں آپ سے سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ فیکلٹی آف لا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کون سے پروگرام جو ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں.
5: فیکلٹی آف لا کے اندر اس وقت 2 طرح کے پروگرام چل رہے ہیں، ایک انڈر گریڈس کے لیے چل رہا ہے اور ایک پوسٹ گریڈس کے لیے چل رہا ہے. انڈر گریڈس میں ہمارا LLB پروگرام ہے جو کہ 5 سالہ پروگرام ہے، اور اس میں 10 سیمسٹرز ہیں. ہمارے ادھر سیمسٹر سسٹم ہے، اینول سسٹم نہیں ہے. بے شک ہم اس میں اینول انٹیک کرتے ہیں لیکن ہمارا ہے یہ سیمسٹر سسٹم، اور یہ 10 سیمسٹر ہوتے ہیں جو کہ فال اور اسپرنگ اس پہ چلتا ہے، اور اکیلی اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم سمر سیمسٹر بھی آن کرتے ہیں، اور اگر کمزور جو طلباء رہ جاتے ہیں ان کو اس میں کور کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارا LLM کا پروگرام ہے جو کہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے.
4: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کا LLM کا پروگرام بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. سر ہمارے سننے والوں کی تھوڑا سی کلیریفیکیشن کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں پہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ اینول بیس پہ ہوتے ہیں، تو آپ کائنڈلی ہمیں بتائیے گا وہ لوگ جو کہ ایڈمیشن یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں فیکلٹی آف لا میں، وہ کب ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، اور اینولی ایڈمیشنز ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی انٹیک کتنی ہوتی ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں.
5: جی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس میں ہمارا کیونکہ اینول سسٹم ہے اور یہ فال سے سٹارٹ ہوتا ہے. فال سے مراد یہ ہے کہ جو سپٹمبر سے آنورڈ یہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایڈ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی ایک پورے پروسیجر کے ساتھ چلتی ہے، اس میں ہماری UCP کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ایڈ آ جاتا ہے، وہیں سے بچے وہاں پہ اپنے اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو اور ایک ٹیسٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ کو کوالیفائی کر دیں گے. इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि लॉ के एडमिशन के लिए ये क्योंकि 5 साला डिग्री है, इसलिए FSC, FA, ICS और इस तरह के दीगर लेवल्स हैं, उसके साथ साथ आपको लैट का एक पेपर भी पास करना पड़ता है और उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट 50% है। 100 नंबर का ये पेपर होता है, ये HEC के अंडर होता है और HEC के लिए साल में 2 से 3 मरतबा ये ऐड देती है। उसमें आप जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक नॉमिनल सी फीस होती है, उसको पे करने के बाद आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद 50 नंबर अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। और UCP आपका अदारा एक ऐसा अदारा है जो आपको हर दफ़ा वेलकम करता है। हमारे पास इस वक्त अगर आपने सीटों की बात की है तो हमारे पास पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ने हमें 100 सीट से रखा हुआ है। कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास भी इतनी ही सीटें मौजूद होती हैं। हमारे पास जो 100 सीट्स हैं ये फॉल और स्प्रिंग में, हम स्प्रिंग में इनटेक नहीं लेते, हम सिर्फ फॉल में ही इनटेक लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ UCP की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा इनटेक होता है, इसलिए हम इस बच्चों को प्रेफर करते हैं कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वो उसमें अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं।
4: ठीक है। और सर आपने जिस तरह से अभी लैट के टेस्ट की बात की तो मैं चाहूँगी बताती जाऊँ कि ये जो लैट का टेस्ट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का जो अपना एडमिशन टेस्ट है उससे टोटली डिफरेंट है। ये उन्होंने HEC के तहत ही रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और वहीं पे इन्होंने अपेयर होना होता है, जिस तरह से MD CAT या E CAT का टेस्ट होते हैं।
5: बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का अपना भी एक टेस्ट होता है जो लैट के बाद और उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद आता है। ये लैट का इंडिपेंडेंट टेस्ट है, जिस तरह आपने कहा कि MD CAT की तरह है या E CAT की तरह है या SAT की तरह है, उसी तरह ही है और ये HEC लेती है।
4: और सर ये सिर्फ अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसके लिए लैट रिक्वायर्ड होता है, LLM प्रोग्राम के लिए या इसमें उसकी कोई
5: जी अभी तक LLM प्रोग्राम के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनल एक टेस्ट जिसको यूनिवर्सिटी इनटेक करती है कि मेक श्योर करे कि वो स्टूडेंट हमारे मेयार के मुताबिक है या नहीं।
4: सर आपने LLB के लिए तो हमें बता दिया कि लैट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है और LLM के लिए ऐसे इस तरह की कोई लैट जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्ट की, लेकिन आप मुझे काइंडली बताइएगा कि यहाँ पर LLM के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है।
5: असल में LLM हमारा फर्स्ट टाइम अभी लॉन्च हुआ है। अब इसमें हमारे लिए जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हमें 20 सीट्स अवेलेबल हुई हैं और इसका अभी इनटेक फॉल में ही आया है और होपफुली इंशाल्लाह ताला हमें स्प्रिंग में भी इसकी इजाज़त शायद मिल जाए। इसमें ऐसा है कि इसके लिए हमें लैट के टेस्ट की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये इंटरव्यू बेस है। अगर आपका क्राइटेरिया 50% मार्क्स से ऊपर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आकर आप इंटरव्यू कर सकते हैं। हमारा एक पैनल बनता है और पैनल में आप अपीयर होकर अगर आपको कामयाबी हो जाती है तो आपका एडमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप अपना LLM कम्प्लीट कर सकते हैं।
4: थैंक यू सो मच सर, आपने मोर डिटेल में हमें सुनने वालों को बता दिया कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से FOL में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और उनका एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसीजर जो है वो क्या है। अब मैं चाहूँगी कि काइंडली आप थोड़ा सा फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में हमें बताइए कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो किस तरह से काम कर रही है और ये जो प्रोग्राम्स हैं इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑफर की जाती हैं और कैसे फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो दैट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर लॉ कॉलेजेस।
5: जी सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये ज़रूर इसमें डिस्टिंग्विश क्रिएट करूँगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ कॉलेजेस इधर जो अवेलेबल हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर या उसके साथ अफिलिएटेड हैं, इसलिए मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करूँगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो UCP की है उसमें डिस्टिंग्विश कैसे है। वो इस तरह इसको मैं बयान करूँगा कि जो हमारे इधर जो एजुकेशन दी जा रही है उसका जो मेथड है वो एक्सपीरियंशियल है, क्लिनिकल है। हम बच्चों पर जो फोकस करते हैं वो एक्सपेरिमेंट जो इसको एक्सपीरियंशियल कहते हैं उनको हम इंगेज करते हैं, क्लासेस के अंदर इंटरेक्शन रखते हैं ताकि बच्चा फुली इंगेज हो जाए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ। हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसको भी रखते हैं, जिनमें हम फर्दर मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने रखे हुए हैं, जिनमें हमारे पास लॉ क्लिनिक भी अवेलेबल है जहाँ पर बच्चे प्रोबोनो सर्विसेज के में आकर खुद से पार्टिसिपेट करते हैं और एक्चुअल कोर्ट के अंदर जाकर अपीयर होते हैं। इसी तरह हमारे पास लेजिस्लेटिव थिएटर है जिसमें हम कोई ना कोई ऐसा एक अहम मौजू उसके ऊपर पूरा थिएटर करते हैं और अपनी आवाज़ को जो हुकूमत है उससे जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हुकूमत की उस तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लीगल हेल्थ कैंप है जिसमें हम प्रोबोनो सर्विसेज देते हैं। मुख्तलिफ जितने भी हमारे सीनियर लॉयर्स हैं उनको हम फर्म से बुलाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, और वहाँ पर हम एक उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ अरेंज करके प्रोबोनो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को, जो एम्प्लॉज़ हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, तलबा हैं और तमाम लोग जो इसके साथ मुंसलिक हैं उनको हम प्रोबोनो सर्विसेज देते हैं और उनका ऑन स्पॉट उनको मशावरत भी करते हैं, जो हमारे पैनल पे मौजूद लोग आते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट हमारे पास फर्म से आते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इंडोर जो मेन हमारा, क्योंकि हमारा लीगल सर्विस को प्रोवाइड करना है तो हमारा लॉ मूट इस वक्त बिलाशुबा बहुत एक उम्दा लॉ मूट है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जिनमें हमारा मॉक ट्रायल होता है या मूटिंग के प्रोग्राम हैं, या अभी रिसेंटली जिस तरह हमारे LLM के अंदर हमने मूटिंग प्रोग्राम किया जिसमें डिफरेंट जजेस, प्रेजेंट जजेस, करंटली जो इस वक्त इन सर्विस हैं वो भी आते हैं और जो रिटायर्ड जजेस हैं वो आकर यहाँ पर इनकी प्रेजाइडिंग करते हैं। तो इस तरह हमारा ये एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को जो तलबा हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, ताकि उनको जब वो कोर्स के अंदर जाएं तो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए।
4: बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरह से हमारी डिग्री जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है और इन स्टूडेंट्स ने और 2-3 साल 5 साल के बाद जो है वो प्रैक्टिस में जाके इन्होंने इन्हीं चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस करना होता है। तो अगर अपनी एजुकेशनल करियर के दौरान वो इस तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों का, तो उनके लिए वो जो है वो यकीनन उनकी प्रैक्टिस में जाके बहुत हेल्पफुल होगी। और जहाँ तक आपने लॉ क्लिनिक की और लेजिस्लेटिव थिएटर की और कम्युनिटी सर्विस की बात की है, तो वो मुझे लगता है आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी जो मॉरल्स हैं, जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो कम्युनिटी सर्विस हैं, उस पर भी उनको जो है वो मोटिवेट भी करना चाहिए। सर काइंडली आप ये भी हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिएगा कि जो आपने हमें अभी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसमें आपने लॉ क्लिनिक और लीगल हेल्थ कैंप और लेजिस्लेटिव थिएटर बताया, क्या ये फैकल्टी ऑफ लॉ खुद से ऑर्गेनाइज कर रही होती है, स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, फैकल्टी मेम्बर्स इसमें होते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा होता है?
5: जी मैं इसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक वेल डेवलप स्ट्रक्चर है। माशाल्लाह हमारी जो डीन साहिबा हैं उन्होंने एक पूरा एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साथ ये अटैच भी है। इसको अंदर हमारी एक लॉ सोसाइटी बनी हुई है जो इसको बखूबी इसको अरेंज करती है और उसको वाच एंड वार्ड भी करती है और मैडम डीन के अंडर सुपरविजन ही होता है। इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इन जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हमने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी रखी होती हैं, जिनके अंदर सबसे पहले मैं कहूँगा तो इसमें हमारा असाइनमेंट क्या होता है, क्विजेज होते हैं, तो ये सारे ही सारे एक्सपीरियंशियल बेस, प्रोपोजिशनल बेस, इनमें एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी फोकस करते हैं कि उनका जितना भी ये एफर्ट है, ये असाइनमेंट हैं, ये क्विजेज हैं, ये सारी की सारी एक्सपीरियंशियल हों ताकि वो कोर्स के अंदर उनको उसका फ़ायदा हो सके। तो इस वजह से और लॉ सोसाइटी इन तमाम चीज़ों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं उनको वो वॉच एंड वार्ड करती है और बड़े अच्छा तरीके से वो सर अंजाम दे रही है।
4: और लॉ सोसाइटी जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने?
5: जी बिल्कुल, लॉ सोसाइटी के ही हैं। इनके लिए भी अलग से पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, इनके लिए भी इसी तरह एप्लीकेशन आती हैं, जो ही एक सेमेस्टर ऑन होता है एप्लीकेशन आई जाती हैं और एप्लीकेशन के बाद इनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या इस तरह के दीगर हायरार्की जो है वो चुनी जाती है और फिर ये एक स्मूथ तरीके के साथ हायरार्की के तहत इसको रन करती है।
4: अभी वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा फिर से ज्वाइन करते हैं।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान सबावान और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है फैकल्टी आवर में फैकल्टी ऑफ लॉ। हमारे साथ मौजूद हैं सर आमिर कामरान। ब्रेक पे जाने से पहले सर आमिर हमें बता रहे थे कि किस तरह से फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स के साथ साथ उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं उन पर भी काम करती है। अब मैं चाहूंगी सर कि आप हमारे सुनने वालों के साथ जो फैकल्टी ऑफ लॉ का एक इनिशिएटिव था जो कि अभी पूरी फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर जो है इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है विच इज मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो उसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि वो प्रोग्राम है क्या और वो उसका पर्पज़ क्या था और वो उसके आउटपुट्स जो हैं वो क्या मिले हमें।
2: जी बहुत शुक्रिया। सामीन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इधर UCP के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर FOL ने एक इनिशिएट लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि हमने एक मेंटोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो मेंटोरिंग प्रोग्राम ऐसा है कि जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है और फिर हमने इसको एक दो साल के अंदर और इन्हांस करके तमाम की तमाम सेमेस्टर के अंदर इसको लगा दिया गया। अब इसके अंदर ऐसा है कि जो बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हमारे इनटेक करके आते हैं फॉल के अंदर तो उनको तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एक वाइड रेंज यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर तमाम पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको लाहौर में और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है इनिशिएट स्टेज के ऊपर। प्रॉब्लम्स के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनको रिहाइश का मसला आता है, इनको यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो इनको लैंग्वेज का बड़ा इशू आ जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आते हुए इनको सेमेस्टर सिस्टम की समझ नहीं आती कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, किस तरह चलाना है, किस तरह वर्क करता है, ये इसमें किस तरह करेंगे। फिर इसके बाद क्योंकि ये रिमोट एरिया से भी लोग आए होते हैं तो यहाँ पर आकर इनको नए तरीके नए जिद्दत जो हमारे इधर UCP हमें प्रोवाइड कर रही है उसके साथ आशनाई करवाना वो भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे इधर बन जाता है। तो उसके लिए फिर FOL ने ये मेंटोरिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसको इनिशिएट किया है जिसके अंदर जो सीनियर हैं यहाँ पर उनको एक हायरार्की के तहत बनाया जाता है। वो हायरार्की इस तरह है कि हमने जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेंटीज़ का नाम दिया है जो कि जिनके ऊपर वर्क किया जाता है और फिर उनको मेंटोर करते हैं उनके सीनियर्स। फिर मेंटोर्स के ऊपर हमने एक फैकल्टी जो टीचर हैं उनको हमने एज अ सुपरवाइज़र वो लगाया हुआ है और फिर वो डायरेक्ट जॉब दे होते हैं मैडम डीन को जो हमारे इधर। और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। इसका कुछ तरीक़ेकार इस तरह हमने इसको मॉनिटर भी किया हुआ है कि हमने इन बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं, ग्रुप्स को हमने एक लीडर दिया हुआ है जो एक मेंटोर की तौर पर काम करता है और वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड अपने सुपरवाइज़र से शेयर करता है और फिर इसकी जो मंथली मीटिंग जो सुपरवाइज़र है वो अपने डीन साहब के साथ जाके करते। इस तरह ये पूरे का पूरा प्रोग्राम एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है ताकि किसी किस्म की भी जो प्रॉब्लम इस बच्चे को आ रही है जो न्यू कमर है UCP के अंदर और वो उसको किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है।
1: बहुत ही अच्छी बात है और सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो कितनी कंसर्न है अपने स्टूडेंट्स के बारे में और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। ऑब्वियसली एनुअल सिस्टम से आए होते हैं हम लोग, डिफरेंट एरियाज से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए इनिशली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको केटर करना और जिनको जो है वो टाइमली एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम श्योर कि ये जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है ये आपकी फैकल्टी की एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही हाईलाइटेड जो है वो फीचर है। सर आपने थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ जो है वो इंगेज रहते हैं और स्टूडेंट्स को भी डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट मॉक कंपटीशन जो है उसमें मोटिवेट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों के साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोई कोर्ट विजिट करवाए जाते हैं या फिर उसका क्या तरीकाकार है, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कम्प्लीट होने के बाद कोर्ट्स में जाकर ही प्रैक्टिस करनी है, तो क्या उनके साथ जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ भी आप लोग जो है वो उनमें स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज करते हैं?
2: जी ये बहुत अच्छा है, मैं इसमें भी बताता हूँ आपको कि हमारा जब इनिशियल बच्चा UCP में एंटर होता है तो प्रोरेक्टर साहब ने इसको एक कनेक्ट वीक के हवाले से हमें एक टास्क दिया था, तो कनेक्ट वीक के हवाले से ओरिएंटेशन कम कनेक्ट वीक उसके अंदर हमने इनिशियल स्टेजेस पे ही जो हमारा न्यू कमर था न्यू स्टूडेंट था उसको हमने कोर्ट में विज़िट करवा दिया। इसके लिए हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म बनाने के बाद हमने यूसीपी से जो बसेस थे यूसीपी ने दी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें बच्चों से कोई चीज़ भी नहीं ली गई, उनको हम लेकर गए कोर्ट्स के अंदर। उनको दोनों अदालतें जो सेशन कोर्ट थी या सिविल कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, इनको अदालतों को दिखाकर उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे जो सीनियर टीचर्स थे वो साथ गए थे, उन्होंने इनको प्रोवाइड की, और प्रोवाइड करने के बाद उनको वापस यूसीपी में जो वापस उनको ड्रॉप कर दिया गया। आई थिंक वो जो इनका ये सेशन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये शुरू से ही, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारा ये एक्सपीरियंशियल है, तो हम पहले दिन से ही बच्चे को जिस जगह पे उसने जाकर वर्क करना है उसके ऊपर जाकर उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो वहीं से ही स्टार्ट ले, तो उसके लिए कोर्ट विज़िट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि हमारे तमाम जो सेमेस्टर बाकिया हैं उनमें भी जो दीगर टीचर हजरात हैं, इस्तेज़ा कराम हैं, या हमारे जो फाइलों का है, या हमारे दीगर जो लॉ सोसाइटी के अंदर, वो भी ये जो विज़िट करवाते हैं जिनमें हाई कोर्ट का विज़िट है, या दीगर जो दूसरे अदारे हैं जिनमें आईपीओ है, या कोई और इस तरह के अदारे जो गवर्नमेंट बेस हैं, वहाँ पर वो लेकर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंशियल बेस इनिशिएटिव होता है।
1: बहुत अच्छी बात है सर, और इस चीज़ जो है वो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट भी करती होगी, और उनके लिए जो है वो एक सोर्स ऑफ जो है वो इंस्पिरेशन भी होगा। सर आप मुझे फाइलों का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताइएगा कि ये फाइलों क्या है और इसका क्या काम होता है फैकल्टी ऑफ लॉ में।
2: यहाँ पर जो हमारे इधर एक अदारा फाइलों के नाम से हमने रखा हुआ है, उसको मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इधर मैडम शाइस्ता अनवर, वो इसको वॉच एंड वार्ड करती हैं और होल्ड करती हैं। वो इसके अंदर जब सेमेस्टर 10 जब हमारा बच्चा यहाँ से पास आउट होता है, तो उस वक्त हम उसके लिए जो प्लेसमेंट है जिसको हम इंडस्ट्री प्लेसमेंट कहते हैं, कि वो डिफरेंट जितनी भी फर्म्स हैं या जहाँ पर वो कोई ऑफिसेज हैं या किसी जगह पर इंडस्ट्री है, वहाँ पर उनको प्लेस करवाना भी यूसीपी की ज़िम्मेदारी होती है। वो इसलिए ज़िम्मेदारी लेती है कि यूसीपी हर स्टूडेंट को अपना बच्चा समझते हुए उसको पूरी की पूरी तरह उसको कैटर करते हुए उसको अकोमोडेट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, और फिर वो उसको किसी न किसी जगह पर वो उसको प्लेस करवा देती है ताकि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है जो कि मैडम शाइस्ता अनवर के अंडर रन हो रहा है।
1: सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को ये भी बताइएगा कि हमारे जो आपने भी जिक्र किया था कि मूट कॉम्पिटिशन और मॉक कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये सिर्फ आपके विद इन डिपार्टमेंट ही होते हैं, या फिर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरी किसी इंस्टीट्यूशन और लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके भी ये कॉम्पिटिशन जो है वो उस पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं?
2: जी बिल्कुल, ये एक पूरा एक प्रोसेस है मूटिंग का और मार्क ट्रायल का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल बेस को जोर देती है। और इसका प्रोग्राम है कि बच्चा हमारे पास जो आकर लर्निंग करे वो उसको जाते ही प्रैक्टिस में उसको फ़ायदा हासिल हो जाए। तो इसमें हमारा जो मूटिंग प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की लॉ सोसाइटी वो उसको देखती है, उसके अंदर बच्चे को जब कोई भी ऐड आता है डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो उसको प्रोवाइड करती है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में उसको जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके अंदर बच्चों को तैयार किया जाता है, बच्चे खुद भी उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, पढ़ते हैं, मुख्तलिफ जो केसेस हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अब उसके अंदर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और माशाल्लाह हमारे कई ऐसे होनहार तलबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ से विनर होकर या रनर अप रहकर आते हैं। इनमें जो सबसे खुशाइन बात ये है कि रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि अब 10th सेमेस्टर में हैं, शहरयार रब्बानी, उन्होंने इंटरनेशनली एक मूटिंग उसको विन किया है, उसका स्कॉलरशिप भी विन किया है, और बाली में जाकर वो कम्पीट करके आए हैं। इसी के साथ हमारे दूसरे जो मनाल हैं सेमेस्टर 10 के हैं, वो भी उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लम्स के अंदर भी जाकर अच्छी तरीके से विन करके आए हैं। इस तरह हमारा जो मूटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही एक उमदा और एक स्मूथ वे से चल रहा है, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको हम बेहतर करते जाएँ। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास फैसिलिटी के अंदर हमारे लॉ साइट्स अवेलेबल हैं, जिनमें पाकिस्तान लॉ साइट हमारे पास अवेलेबल है, और इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान लॉ जर्नल वो भी अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ की आपने बात की है, तो हमारे पास डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएट भी लिया हुआ है, और वो ये है कि हम पैरेलल इसी सेमेस्टर के अंदर जो हमारे ऑड सेमेस्टर्स होते हैं जिनके अंदर इवन सेमेस्टर्स होते हैं जिनके अंदर हमारा 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें हमने मूटिंग और मॉक ट्रायल के लिए एडवोकेसी प्रोग्राम रखा।

0: की जाती हैं, किस तरह उससे डिस्कशन की जाती है, कौन सा लॉ प्रोवाइड किया जाता है और किस तरह वो जाकर उसमें प्लीडिंग कर सकते हैं और फिर आ जाके उसको आर्गू कर सकते हैं। इसी तरह जो एडवोकेसी 3 है उसके अंदर क्रिमिनल लॉ को देखा जाता है, एडवोकेसी 4 में हम सिविल लॉ को देखते हैं और एडवोकेसी 5 में हम EDR को देखते हैं, जो कि आजकल के करंट इश्यूज़ के अंदर ये जो लोगों को आपस में मिलाना आउट ऑफ द कोर्ट उसके लिए बनाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये एडवोकेसी का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करता है और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
1: बिल्कुल सर, नो डाउट। सर मुझे बताइएगा, बल्कि हमारे सुनने वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि ये जो एडवोकेसी आपने 5 लेवल एडवोकेसी स्किल्स की बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या फैकल्टी ऑफ लॉ के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सारी मौजूद है?
0: जी, हमने असल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो फोकस करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर, तो हमने जो अदालत का जो ओरिजिनल स्टाइल है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसी तरह की हमने यहाँ पर मोटिंग के लिए और मॉक ट्रायल के लिए अदालती निज़ाम, अदालती सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर इजीली उस तमाम एडवोकेसी स्किल को प्रोवाइड किया जाता
1: है। सर आपने हमें एडवोकेसी के लिए तो बता दिया, लेकिन आपने जिक्र किया था कि सेमेस्टर 10 के अंदर इनको एडवोकेसी लेवल में एक ADR जो है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब आपको पता है कि ADR जो है वो कोर्ट रूम्स के अंदर तो उस तरह से नहीं होता, तो क्या ADR ट्रेनिंग के लिए भी कोई अलग से वेन्यू आपके पास मौजूद है?
0: जी बिल्कुल, हमने ADR के अंदर हमारे पास पीस सेंटर मौजूद है जो कि फुली फर्निश्ड है और फुली इक्विप्ड है। इसी तरह हमने उनके अंदर एक प्रोबोनो सर्विस के तौर पर लोगों को हायर किया हुआ है, लॉ सोसाइटी उसको भी देखती है। उसके अंदर हमारे पास जब भी कोई केस ऐसा आता है ADR का, तो वहाँ पर हम उनको फुली इंगेज कर देते हैं और पूरे का पूरा रूम उनके लिए अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास दूसरे तौर पर लॉ क्लिनिक मौजूद है जो कि प्रोबोनो सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है और वो भी हमारे पास इन कामों के लिए यूज़ होता है।
1: जी ठीक है सर, आप हमारे सुनने वालों के साथ जो है ना वो आप शेयर कीजिएगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ में जैसे आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इंटर्नशिप प्रोग्राम भी जो है वो होता है और दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर डिग्री, तो वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो किस सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है और उसका थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और वो उसका ड्यूरेशन कितनी होती है और क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है या फिर दैट इज़ ऑप्शनल?
0: जी बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ आपको कि हमारा ये डिग्री का हिस्सा होता है। हमने जो 10th सेमेस्टर पूरे करने होते हैं उनमें हमारे पास एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी होता है जो कि आमतौर पर समर के अंदर आता है। समर जब हमारा फॉल का प्रोग्राम और स्प्रिंग का प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उसके बाद हम उसको 8th सेमेस्टर के बाद उसको लॉन्च करते हैं और इसके अंदर उनको डिफरेंट जितनी भी फर्म्स हैं उनके अंदर बच्चों को भेजा जाता है और ये डिग्री के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर डिग्री मुमकिन नहीं होती। इसके लिए हमने क्रेडिट आवर भी रखे हुए हैं और वो डिग्री का हिस्सा बनाते हैं।
1: ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और ये बड़ा ज़रूरी भी है और आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो है दैट इज़ कंपलसरी और स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप में आप जो चीज़ें सीखते हैं वो ऑब्वियसली फिर वो आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू जॉइन योर प्रैक्टिस। सर आपने अभी तक जितनी भी बात की वो हमारी ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स थे, जो एक्टिविटीज़ थी, जो आपकी इंटर्नशिप्स थी, वो सारी की सारी हमारी लोकल्स नेशनल थी, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में आप किसी तरह की कोई इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कोई इंटरनेशनल कोलेबरेशन, कोई इंटरनेशनल कनेक्ट किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, किसी डिफरेंट बार्स के साथ, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों के साथ जाएँ वो शेयर करें।
0: जी बिल्कुल, हम लोकली और इंटरनेशनली दोनों इसमें फोकस करते हैं। हमारे पास जो मीटिंग मैंने अभी आपको बताया था कि वो मीटिंग पहले हमारे पास जो बाली के अंदर वो करके आए हैं और अब वो दूसरा जो हमारे पास है वो अमेरिका के लिए, वो उसके यही शहरिया रबानी उसके लिए भी जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमने कोलेबरेशन के अंदर जिसकी यूनिवर्सिटी कोलेबरेशन है उसके अंदर भी हमने एक यूनिवर्सिटी जिसका यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड जो है उसके साथ हमने कोलेबरेशन की हुई है और हम मज़ीद भी इंटरनेशनली लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं, उनसे कोलेबरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसका हिस्सा बने और हमारे स्टूडेंट्स उधर जा सकें और उनके स्टूडेंट इधर आ सकें, हमारे फैकल्टी मेंबर्स उधर जाकर ट्रेनिंग भी हासिल कर सके, उधर उनको पढ़ाने का मौका भी मिले और बाहर के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान में आकर यहाँ पर उनको भी मौका मिले कि वो इधर आकर पढ़ाएँ भी और हमें अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो इधर आकर ट्रेन भी करें।
1: और सर ये जो अभी आपने हमें बताया कि सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो आप फैकल्टी ऑफ लॉ का जो है वो एक कोलेबरेशन चल रही है, तो इसका जो मोड ऑफ है वो ऑनलाइन है या फिर ये किस तरह से इसको जो है वो आप कंडक्ट कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, वो ऑनलाइन ही है।

0: है क्योंकि हमारा अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हम इसको बाहर कर सकें। ये ऑनलाइन है और रेगुलर बेसिस पे है, हम हर वीकली और 15 डेज के बाद हम उसको अरेंज करते हैं और उसके थ्रू अब इसको डिस्कशन करते हैं और वो ही डिस्कशन फिर आगे बच्चों में पास ऑन हो जाती है।
1: आपका मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और दूसरा ये कि हम जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हम LLM के ऊपर करेंगे कि LLM का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, प्रोग्राम किस तरह के ऑफर किए जा रहे हैं, फैकल्टी कौन सी है।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: बेटी जो कि खुदा की रहमत समझी जाती है, जब किसी घर में पैदा होती है तो उस घर को अपनी शरारतों और नन्हे कदमों से वो रौनक बना देती है। मरियम भी अपने घर की रौनक थी। वालिद से बातें करना, वालिदा से लाड करना, सहेलियों से मजाक मरियम की आदत में शामिल था। मरियम की तरह मरियम के ख्वाब भी बेबाक थे। वो अक्सर ही अपनी वालिदा को अपनी शहादत से मुतल्लिक तैयार रहने का कहती थी।
1: सुबह 9 बजे मरियम का फोन आया कि बाबा मेरी मामा फ्लाइंग है, अगर मैं आ गई तो मैं फ़ोन करूंगी, अगर मैं नहीं आई तो आप समझ जाना। ये वो हर फ्लाइंग में कहती थी, स्पेसिफिक उसने उस दिन के लिए नहीं। और मेरा हर वक्त यही जवाब होता था कि हाँ मरियम ठीक है, कोई बात नहीं, और आप चले जाओ, नहीं आओगे तो मुझे इधर उधर से खबर पड़ जाएगी।
0: बाप की उंगली पकड़कर चलने वाली बेटी जब शहीद होकर बाप के सामने आती है तो इसके बाप की आंखें तो नम होती हैं, मगर सर फख्र से ऊंचा होता है। मरियम के बारे में इनके वालिद कर्नल मुख्तियार शेख का कहना है कि
2: तो मुझे एक आम बच्चे की तरह वो लगती थी, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि शी इज़ अ डिफरेंट। लेकिन यस, अब जब मैं करता हूँ उसकी शी इज़ नॉट हियर, तो मैं महसूस करता हूँ कि उसमें क्या क्या खूबियाँ थी। कभी कभी मैं उसको कहता था, मरियम कि आपकी डिग्री क्या होगी, BSc होगी, BS ऑनर्स होगी, क्या होगी? तो मुझे कहती, बाबा मुझे आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा ये बैज लग जाए, मेरा जो विंग लग जाए फ्लाइंग का, बस ये मेरी जो है एम है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

टिकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। सामईन, आज हम बात करेंगे फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन आर्ट्स के अंदर फिल्म के हवाले से, क्योंकि फिल्म जो है इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत डिमांडेड है, और फिल्म के अंदर जो तलबा तलबात खास तौर पे काम कर रहे हैं वो किस बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं, जिसकी मुतरफ इस वक्त पूरे दुनिया है। तो फिल्म पे ही बात करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के लेक्चरार सैयद अली मज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम का, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ जरा अपने अंदाज के साथ और खुद ही करवा दीजिएगा हमारे सामईन को।
3: आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। जैसे आप बता चुके हैं, मेरा नाम सैयद अली मज़ाहिर है। मेरा बैकग्राउंड UCP से ही है। मैंने अपना BS मैथ्स कॉम UCP से 2023 में मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और मैंने बाहर काम करना शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में ही। आई वुड नॉट से फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री ज़ाहिर ज़्यादा है, तो बाहर ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। और मैंने हम TV के साथ काम किया, मैंने सिन्फ़ आन एक बड़ा ज़बरदस्त मशहूर ड्रामा एयरवाई प्रोडक्शन में मैंने उसमें काम किया, उसकी प्रोडक्शन टीम में काम किया, और साथ मैंने अपना MPhil स्टार्ट किया इन फिल्म TV एंड डिजिटल मीडिया। अभी वो मेरा पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था, खाली कोर्स वर्क ही हुआ था, तो मुझे बाहर से स्कॉलरशिप की ऑफर आई और मैं UK चला गया अपना MA करने के लिए। और मैंने बाहर जाके अपना MA मुकम्मल किया डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन में। डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन करने के बाद कुछ अर्सा मैंने वहाँ काम किया डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू फिल्म मेकिंग। अपना साल डेढ़ साल लगाने के बाद, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, मैं पाकिस्तान वापस आया और मैंने जो यहाँ का MPhil अपना आधा कोर्स वर्क छोड़ के गया था, मैंने यहाँ पे आकर अपना थीसिस सबमिट करवाया। मेरी जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से मैं डबल MS हूँ। और फिर मुझे UCP मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। रिसेंटली मैंने UCP ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। और बिल्कुल मेरी जो फैकल्टी है दैट इज फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। बट जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के अंदर सब डिपार्टमेंट भी है, तो जो डिपार्टमेंट है मेरा वो है FTD फिल्म TV एंड डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट में। मैं लेक्चरर यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ।
2: बहुत खूब सर, बहुत खूब। और जिस तरह आपने अपने तारुफ में UCP के हवाले से कुछ बताया, इससे भी रिलेटेड मजे के सवाल हैं जो हम आपसे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फिल्म के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं और हमें फायदा जो है वो पहुँचता है?
3: बिल्कुल, इस तरह है कि UCP हमेशा से फिल्म पे, तो उसने हमेशा से फोकस किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट था तब यहाँ पे FTD डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन स्पेशलाइजेशन तब भी फिल्म में हुआ करती थी। तो एक तो पहले ही सेमेस्टर में, अब मैं आपकी बात करूँगा, अब पहले ही सेमेस्टर में जो नए हमारे स्टूडेंट्स आते हैं उनको इंट्रोडक्शन टू फिल्म TV एंड थिएटर पढ़ा दिया जाता है, ताकि उनको बता दिया जाए कि अब फिल्म TV और थिएटर भी किसी हद तक वो चीज़ है कि जहाँ आप मार्केट में जाएंगे तो इसका स्किल होना भी आपके पास बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज एक ज़माने में जैसे हम बात किया करते थे, भाई जिसके पास कंप्यूटर का स्किल है ना वो हर फील्ड में जा सकता है। आज जिसके पास फिल्म क्या है, फिल्म से मुराद है जो कैमरा फ्रेमिंग कर सके, साउंड को देख सके, लाइट देख सकते, हर चीज़ की टेक्निकल जिसके पास नॉलेज हो, वो मार्केट में कहीं भी जा सकता है। बिकॉज आजकल हर इंडस्ट्री में सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी को अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करवाने के लिए एक फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर की जरूरत है। तो वही अच्छा कंटेंट क्रिएटर है जिसको फिल्म के बारे में पता है, जिसको उसमें। तो UCP की, जैसे आपने मेरे सवाल किया, तो UCP इंट्रोडक्शन टू फिल्म तो हमेशा से पढ़ा रहा है। अब जब से FTD डिपार्टमेंट आया और FTD के अलावा भी जब हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं फिल्म के, तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ फिल्म से रिलेटेड हैं, जिसमें से जैसे तीन सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे। एक सब्जेक्ट है डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड TV, जिसमें हम तैयार करते हैं स्टूडेंट को कि आपने डायरेक्टर का रोल कैसे निभाना है। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, के फिल्म के अंदर भी थ्योरीज हैं, लॉज हैं। सो हमने वो लॉ को फॉलो करते हुए, वो थ्योरी को फॉलो करते हुए हमने अपने स्टूडेंट को तैयार करना है कि किस तरीके से, किस खूबसूरत अंदाज से आप अपनी फिल्म को पर्दे पे लेकर आ सकते हैं, बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपके पास थ्योरीज आपकी नॉलेज होगी। सो ये तो दो सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मेरे बाकी कुलीग्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसमें जेंडर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं फिल्म के, उसमें फाइनल प्रोजेक्ट है, हम फाइनल प्रोजेक्ट जिस तरह करवा रहे होते हैं। सो फिल्म के हवाले से आई थिंक सो यूसीपी जो है वेल इक्विप्ड है फैकल्टी वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी।
2: बहुत खूब, और हमने भी फिल्म पढ़ी जब मैं पहले सेमेस्टर में हम आए, हमें बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ाएगी और वाकई बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है। अगर आप नीयत से पढ़े, शौक से पढ़े, तो फिल्म वो आपको एंजॉय करवा के फिर आपको पढ़ाया जाता है। और यूसीपी में इस चीज को जो है वो बतौर स्टूडेंट मैंने भी इस चीज को अंदाजा लगाया, और क्योंकि हमने जब पढ़ा तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट्स थे। तो सर फैसिलिटीज वगैरह में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है फिल्म के हवाले से वो कहाँ तक है?
3: जी मैं, मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि यूसीपी के बाद जो फैसिलिटीज हैं फिल्म के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी लाहौर में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाता भी हूँ, मैं विजिट भी करता हूँ, मेरे अपने दोस्त पढ़ाते भी हैं वहाँ पे, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हों जो फिल्म से रिलेटेड है। हमारे पास टॉप नॉच एक स्टेट ऑफ द आर्ट आई वुड से प्रोडक्शन हाउस मौजूद है, जो जर्नलिज्म के लिए तो है ही है बट फिल्म मेकिंग के हिसाब से भी बेहतरीन आपके पास है। आपके पास ग्रीन स्क्रीन, जिसको आप क्रोमा कटिंग कहा जाता है, जिसको आपके पास वो मौजूद है, आप वहां करके अपनी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म मेकिंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास वो एक्सपर्ट्स मौजूद है, फैकल्टी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास वो एक्सपर्ट्स मौजूद है जो टेक्निकल लोग हैं, जो आपको कैमरा, लाइटिंग और वो चीजें स्टूडियो के हवाले से समझा सकते हैं फैकल्टी से हटके। देन वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट एडिटिंग लैब, जिसको पोस्ट प्रोडक्शन लैब हम कहते हैं। हमारे पास मैक भी है उसके अंदर, हमारे पास विंडो सिस्टम्स भी मौजूद हैं। सो जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो फिल्म की बात करते हैं, तो प्री प्रोडक्शन में आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें वाला के साथ साथ प्री प्रोडक्शन में आपके पास बेहतरीन फैकल्टी है जो आपको प्री प्रोडक्शन में मदद करती है। प्रोडक्शन के लिए आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट आपके प्रोडक्शन हाउसेज है, आपके पास इक्विपमेंट्स है, एंड देन इन द एंड आपके पास एक एडिटिंग लैब है। सो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यूसीपी में ही फिल्म बना सकते हैं, यूसीपी की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं।
2: काफी बच्चे स्टूडेंट्स जो है यूसीपी के वो यहीं पे प्रोडक्शन भी यहीं पे सारा सेट लगा के, काफी बच्चे
3: बिल्कुल ऐसे ही। और यूसीपी जो स्पेशली यूसीपी से ज्यादा मैं कहूंगा जो हमारा डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, वो बहुत सपोर्ट करता है। हमारे जो डीन है ही इंकरेज बेसिकली, अगर आप उनके साथ जाके अपने आइडिया शेयर करें तो वो आपको इनकरेज करते हैं। इसी तरह हमारे, मैं सर कामरान का नाम लेना चाहूँगा, सर कामरान बहुत इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम एक्सपेरिमेंट आप एक्सपेरिमेंट करो और लेकर आओ और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। और वो इसीलिए पॉसिबल है कि यूसीपी ने हमें ये फैसिलिटीज दी हुई हैं। हम जिस रेडियो स्टेशन में बैठे हुए हैं यहाँ पे, जब आप डॉक्यूमेंट्री कोई स्टूडेंट यहाँ बनाता है यूसीपी में अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरा ख्याल से उसको किसी नरेशन रूम की या किसी वॉइस ओवर रूम की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज वो रेडियो जिसमें हम बैठ के बात करें यहाँ पे आके वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए वॉइस ओवर नरेशन रिकॉर्ड कर लेता है, जो यूसीपी ने फैसिलिटी दी हुई है। अगर आप बाहर जाके रिकॉर्ड करें तो आपकी स्टूडेंट की कॉस्ट कहीं से कहीं चली जाएगी। ये जो फैसिलिटीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं जो एक फिल्म स्टूडेंट को या एक मीडिया स्टूडेंट को लाजिम है देना। अगर आप ये फैसिलिटीज नहीं दे रहे तो आप टेक्निकली फिल्म सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे।
2: और दूसरा, ये बात भी आपकी मुझे बड़ी यानी कि मोटिवेट भी किया कि जितना मर्जी आप स्टूडेंट को टैलेंटेड ले, लेकिन उनको निखारने के लिए, उनको बनाने के लिए बेहतरीन फैकल्टी की, बेहतरीन असातज़ा कराम की जरूरत होती है, और वो भी बहुत प्रोफेशनल असातज़ा कराम है जो हमें पढ़ाते हैं। और वो जितना मर्जी बोर सब्जेक्ट हो, लेकिन जब टीचर हमें पढ़ाते हैं तो दिल तो हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है फील्ड्स के साथ, और जिस तरह वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जो हमें पढ़ाया जाता है, तो मैं इस चीज़ से बड़ा यानी कि अच्छा लगता है। क्योंकि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज में देखें, हम भी अगर देखें, तो इस तरह पढ़ाया जाता है जिस तरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और इस बात की जो मोहतरफ है वो बाकी लोग भी हैं, खाली मैं ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, आप बाहर से पूछ सकते हैं जो फैसिलिटीज जिस तरह फिल्म के अंदर खासतौर पे दी जाती हैं, और वो हर एक बंदे का जो डायरेक्शन का एक उसकी फर्स्ट क्लास होती है वो उसे यहीं से मिल जाती है, वो बन के फिर मार्केट में जाता है, और ये चीज बड़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: एक बार फिर से सामईन आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 92.6 फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। आज के इस प्रोग्राम में हम फिल्म के हवाले से बात कर रहे थे कि फिल्म की जो दुनिया है उसमें अपने आप को किस तरह मनवाया जाए, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है वो फिल्म के तलबा तलबात को किस तरह फैसिलिटेट कर रही है, किस तरह सब्जेक्ट्स हैं उनको निखार के बना के मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के लेक्चरार सर सैयद अली मज़ाहिर साहब। सर फिर से एक बार आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर बताइएगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी फिल्म पढ़ा रही हैं, तो यूसीपी जो है वो उनसे डिफरेंट किस तरह होती है? वो उनके पास भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनके पास भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी टीचर्स हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो यूसीपी का स्टूडेंट है, यूसीपी के जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट कैसे हैं उनसे?
2: ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल उन यूनिवर्सिटी से भी करना चाहिए जिन यूनिवर्सिटीज़ का फिल्म के हवाले से नाम ज़्यादा लिया जाता है। मैं लाहौर की बात करूँगा, लेकिन हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट उनसे मार्केट में अगर आप देख लें, एनालिसिस करवा लें, मैं आपको दे भी सकता हूँ फिगर जितना मेरे पास है, हमारा स्टूडेंट क्यों ज़्यादा है, उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, जो हम पहले जिस पे बात कर चुके हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, और हम अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हैं।
1: एग्जैक्टली
2: ऐसा नहीं है कि हमारे फैसिलिटीज़ में अगर काम 10 साल पहले हुआ था तो हमारा इक्विपमेंट 10 साल पुराना ही है। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हम अपने बच्चे को वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, इस टाइम पे AI का दौर है फॉर एग्जाम्पल,
1: बिल्कुल।
2: तो हम जो मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो हम फिल्म के टीचर्स हैं, हम जब बैठते हैं आपस में तो हम यही कहते हैं कि अच्छा, हमने जो अपनी असाइनमेंट डिजाइन करनी है उसमें हमने बच्चे को कहना है कि AI का इस्तेमाल करो,
1: सही,
2: लेकिन AI का इस्तेमाल उस तरीके से करेंगे जहाँ पे उनको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप बच्चे को नॉर्मल एनालिसिस दे देंगे फिल्म करने का, तो वो तो ChatGPT करके आपको 2 मिनट में दे देगा, तो आपने एनालिसिस तो देना ही नहीं। अब आपने उनको AI, जब पता है आप मना भी करेंगे तो AI इस्तेमाल होनी है, तो आपने अपनी असाइनमेंट, अपनी चीजें उस तरीके से डिजाइन करनी है जिसमें आप AI इस्तेमाल कर भी लें तो आप कुछ नहीं कर सकते,
1: फायदा नहीं देगी।
2: या आप AI का ही असाइनमेंट देंगे, AI को इस्तेमाल करते हुए कुछ बना के लाओ, क्योंकि उसमें आपका दिमाग लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। तो ये इस तरह हम अपग्रेड कर रहे हैं। आई एम श्योर बाकी यूनिवर्सिटीज भी कर रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक रीजन है। जो दूसरा रीजन है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिस पे अभी तक यूनिवर्सिटीज ने नहीं सोचा, बाकी क्यों बाकी बच्चे यूनिवर्सिटीज के, नामवर यूनिवर्सिटीज के बच्चे बाहर जाते हैं, एक हद तक मार्केट में अच्छा करते हैं, एक हद उसके बाद डाई डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपको नजर आना कम हो जाते हैं, लेकिन यूसीबी का बच्चा आपको सस्टेन करता हुआ नजर आता है। उसका रीजन ये है कि हमारे जो फैकल्टी है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है, वो आपको दोनों महाजों के लिए तैयार करती है। कौन से दो महाज? पहला महाज वो है जो आपका प्रैक्टिकल महाज है, कैमरा कैसे चलाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, आपने बोलना कैसे है। मैं आपसे इस टाइम पे खाली फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मीडिया की बात कर रहा हूँ,
1: मीडिया की
2: मैं बात। बोलना कैसे है, आपका तलफ्फुज कैसे निकलेगा, मतलब जर्नलिज्म में या रेडियो की अगर हमको बात करें,
1: सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं।
2: आपकी छोटी फिल्म के हवाले से आपको तैयार किया जाता है कि आपको कैमरा कैसे करना है, आपने ऑपरेट, लाइटिंग कैसी होगी, 3-पॉइंट लाइटिंग क्या होगी, मतलब शॉट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। मैं अब उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकली महाज के लिए तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: जो दूसरा महाज है, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं तैयार कर पाती और हम कर देते हैं, वो है उनकी नॉलेज जो थ्रेटिकल है।
1: सही, बहुत गुड।
2: प्रैक्टिकल तो आपने उनको तैयार कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना एक अरसे के बाद डाई डाउन होना शुरू हो जाती है, बिकॉज जैसे हमने AI से बात शुरू की, उसका मकसद ही ये था स्टार्ट करने का कि आज AI है, कल कुछ और होगा। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे खिलाते जाएंगे, कैमरे पे, लाइटिंग पे, ठीक है आप खिलाते जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होगी। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो हम लोग बड़ी बड़ी लाइटें लेके जाया करते थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, 100-100 मेगावाट की, उससे भी बल्कि ज्यादा लेके जाए। आज आपके पास छोटी छोटी लाइट्स आ गई हैं, RGB लाइट्स आ गई हैं, पॉकेट लाइट्स जिनको कहा जाता है, बट इफेक्ट उनका वही है,
1: पोर्टेबल लाइट्स
2: आ गई हैं, रॉड लाइट्स आ गई हैं, ठीक है। आपका पहले हमें रिफ्लेक्टर्स और वो चीजें लगानी पड़ती थी, अब इनबिल्ट चीजें आना शुरू हो गई हैं,
1: शाइनिंग की,
2: पहले आपको वो थर्मापोल शीट लगानी होती थी, अब आपके साथ लाइटों के साथ चीजें आ रही हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये चीजें तब आपको समझ आएंगी जब आप थ्रेटिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो यूसीपी अपने बच्चे को खाली प्रैक्टिकल काम नहीं सिखाती, वो थ्रेटिकली भी बहुत स्ट्रांग करती है। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट का आपसे नाम लिया, फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इस सब्जेक्ट में मैं सिर्फ थ्योरीज पढ़ाता हूँ, फिल्म की क्या क्या थ्योरीज हैं, सिमोटिक थ्योरी क्या है, तो योनरा थ्योरी क्या है, फलाना थ्योरी, मतलब आप जो यूज नेम इट और वो थ्योरी का नाम फिल्म में मौजूद है, फेमिनिज्म थ्योरी क्या है फॉर एग्जांपल, तो मतलब थ्योरीज। तो अब बच्चे को क्या होता है कि जब वो मार्केट में जाता है ना, तो उसके पास आइडियाज होते हैं, आइडिया सिर्फ तब होते हैं जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्रेटिकल नॉलेज भी होगी।
1: होगा बिल्कुल, बहुत खूब। और हम तो फिल्म सिर्फ वैसे सामान देख लेते हैं, लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिएगा कि फिल्म के पीछे कितने बड़ी कहानियां होती हैं। फिल्म एक पूरी बजाहर तो हमें नजर आती है कि एक पूरी वीडियो चल रही है, लेकिन उसके पीछे जो थेरीज होती हैं, उसके पीछे जो कहानियां होती हैं, उसको किस तरह बनाया जाता है, उसमें उन किरदारों को किस तरह आपके देखने वालों के दिल और दिमाग में उतार दिया जाता है, ये बहुत बड़ा फन है। और ये जो है यूसीपी के जो तलबा तलबात हैं उनमें भी खासा नजर आता है, उनके साझा कराम में भी नजर आता है, और फिल्म में जो होना चाहिए जान वो यहाँ पे डाली जाती है। सर हमने ये तो देख लिया कि स्टूडेंट्स आपने तैयार कर दिए, उनको सिखा दिया उनको, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी देना यूनिवर्सिटी का हक फ़र्ज़ होता है, उन पर ज़रूरत होती है, साथ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वगैरह, वो उसको उस सिलसिले को किस तरह तलबा तलबात को तक पहुँचाया जाता है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह यूसीपी की तरफ से।
2: लेकिन यूसीपी इस मामले में भी सबसे आगे है, और हमारा डिपार्टमेंट भी मैं कहूँगा बहुत आगे
1: फिल्म की दुनिया में।
2: जी जी, फिल्म की दुनिया में और मीडिया की दुनिया में, मैं दोनों बात करूंगा आपसे, बट फिल्म में भी मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव की वैसी बात कर रहा हूँ कि हम बहुत आगे हैं, हमारा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी इस टाइम पे भी आप नीचे ए लॉबी में जाएं तो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है।
1: यस
2: ठीक है, शायद आपको मालूम ही होगा ये 2 हफ्ते पहले यूसीपी में प्रॉपर करियर कनेक्ट हुआ है।
1: जी जी,
2: उस करियर कनेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्केट जिसकी डिमांड थी वो मीडिया, मतलब फिल्म मीडिया या कंप्यूटर, ये 2 लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा थी, मतलब सबसे ज्यादा जो स्टॉल या बूथ कह लें जिनको, वो जो लगे थे वो हमारे मीडिया के लगे थे। तो ये यूनिवर्सिटी ने आपको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी कि आप ना चल के जाओ, पूरी पूरी कंपनी आगे बस चल के आ रही है कि आओ और हमें ज्वाइन करो। मैं आपको छोटा सा हमारी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना आप एनालिसिस करें मार्केट का, 80-85% चैनल्स में आपको यूसीपी का एलुमनाई या यूसीपी का बच्चा मिलेगा किसी ना किसी प्रोडक्शन में या इवन कैमरे के आगे भी। मैं आपको सिर्फ अपने बैच की बात बता सकता हूँ, मेरे बैच में इस टाइम पे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिनके मुझे नाम पता है, जिस वक्त मशहूर बड़े बड़े चैनल्स में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी।
1: सही सही,
2: ठीक है। तो ये तो मैं आपको अपने बैच की बात बता रहा हूँ, जब रिक्रूटमेंट ड्राइव इतनी ऑफन नहीं हुआ करती थी, अब तो मैं देखता हूँ कि यूसीपी के पेज पे हर वक्त रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ हो रही है, हर वक्त लगी होती है, और उसी वजह से हमारा जो बच्चा है वो हर जगह हर इंडस्ट्री में मौजूद है, वो फिल्म की हो, वो जर्नलिज्म की हो या वो पीआर एडवर्टाइजिंग की हो। जहां तक आपने फिल्म की बात की मेरे से, हमारी जो इंडस्ट्री है फिल्म की, वो जाहिर है एक हमें चीज समझने की जरूरत है, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है।
1: ऐसा ही है बिल्कुल,
2: अभी हम फिल्म इंडस्ट्री तो बोल देते हैं बट अभी वो इंडस्ट्री बनी नहीं है, अभी वो बच्चा है, इट्स अ बेबी। और दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप इस फील्ड में आके अपना नाम बना सकते हैं, बिकॉज एक फील्ड जब नहीं आती है ना तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं।
1: ऐसा ही है,
2: और जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं तो

0: नाम बनाए।
1: सही हो गया, बिल्कुल करियर कनेक्ट किया आपने, और आपने बड़ी फ्रेश जो एग्जांपल्स है वो आपने हमें दी। सर बाकी फील्ड में भी आपने तो माशाल्लाह बहुत काम किया है, तो फील्ड्स के अंदर भी तो आपको यूसीपी के बच्चे नजर आते होंगे, उनको बाकी बच्चों से डिफरेंट समझते हैं, डिफरेंट लगते हैं, कुछ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है या एज इट इज जिस तरह बाकी बच्चे?
0: बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है। वो उनके पास प्रैक्टिकल के साथ थ्रेटिकल नॉलेज होता है, ठीक है। जब वहाँ पे बात हो रही होती है ना कैमरे की, तब भी यूसीपी का बच्चा खड़ा होता है, जी मुझे पता है जी कैमरे का या लाइटिंग का या किसी भी टेक्निकल चीज का आप नाम ले लें। और जब वहाँ पे कोई थ्रेटिकल बात हो रही होती है, जैसे आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की कि एक फिल्म बनाना के लिए सिर्फ कैमरा लाइट्स या वो चीजें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड होता है, आप करेक्टर को बनाते हैं, स्टोरी को आप डेवलप करते हैं।
1: ऐसे
0: ये जो टीम होती है जब ये करती है, तो ये जो फिल्म का प्रोजेक्ट होता है ये उसके लिए बच्चे की तरह होता है, वो अपना बच्चे की जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, आप वैसे ही ख्याल रखते हैं उसका। तो वही वाली बात है कि यूसीबी का बच्चा या हमारे डिपार्टमेंट का बच्चा जब मार्केट में खड़ा होता है तो आपको नजर आता है ये यूसीबी का बच्चा है, क्योंकि इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्रेटिकल नॉलेज भी उतना ही होता है जितना मेरा ख्याल है किसी और यूनिवर्सिटी, नामवर यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है। अगर आप सिर्फ एलुमनाई, हमारा जो मीटिंग होती है एफएमसी की एलुमनाई मीटिंग होती है, आप उसके अंदर आके कभी बैठे हैं तो आपको पता चलेगा कि यूसीबी का बच्चा क्या क्या कर रहा है। मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिल्म के हवाले से क्या क्या कर रहा है, डबिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, बाहर के बड़े बड़े सीजन पाकिस्तान में आते हैं और उसकी डबिंग यूसीपी के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी वो बात नहीं जो मैं अपने से बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप एलुमनाई मीटिंग में हैं, आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे ऐसे, हमारे यूसीपी के बच्चे ऐसा कॉन्टेंट बना रहे हैं, शॉर्ट कॉन्टेंट जिसमें आप रील्स कॉन्टेंट है या वो है, आपको यूसीपी के बच्चे मिलेंगे। टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स आपको यूसीपी के मिलेंगे, और ये इसीलिए मिलेंगे क्योंकि यूसीपी ने आपको ये फ्रीडम और ये फैसिलिटीज दी हुई है।
1: बिल्कुल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का होना और प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। जी सामीन, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: साहब जो कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में फिल्म के लेक्चरार हैं। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म के हवाले से, और एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि बड़ी मुझे पता लगी, आपने उसके बारे में मुझे बताना भी है कि फिल्म फेस्टिवल जो पहला हुआ था आप उसकी कोर टीम में मौजूद थे। और सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि फिल्म फेस्टिवल UCP का क्या है और आप उसकी फर्स्ट कोर टीम में मौजूद है, तो ज़ाहिर बात है आपको उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसके बारे में बताइएगा।
1: जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि जब पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था तब उस ज़माने में मैं स्टूडेंट था यहाँ पे BS का, और मैं छठे सेमेस्टर में था, और मुझे ये मौका दिया गया डिपार्टमेंट की जानिब से ही कि मैं UCP का पहला फिल्म फेस्टिवल करवाऊँ और मैं अपनी टीम बनाऊँ। और उसका मकसद यही था UCP में फिल्म फेस्टिवल करवाने का कि हम फिल्म को आम करें UCP में, क्योंकि उस टाइम तक हमारा डिपार्टमेंट जो है फिल्म TV एंड डिजिटल मीडिया वो नहीं आया था, वो नहीं लॉन्च हुआ था, तो एक ना उस तरह उसकी बुनियाद रखी जा रही थी फिल्म फेस्टिवल के जरिए कि यहाँ पे फिल्म का ट्रेंड है,
0: आगाज किया जाए
1: तो उसका ट्रेंड मौजूद है यहाँ पे। तो मेरे पास बिल्कुल ये एजाज हासिल है, मैं कहूँगा कि पहले फिल्म फेस्टिवल से मैं UCP के फिल्म फेस्टिवल के साथ हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तब मैं स्टूडेंट के साथ तरह साथ था, अब मैं एज ए फैकल्टी मेंबर उसको टीम का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उस फिल्म फेस्टिवल, इस फिल्म फेस्टिवल की, उस फिल्म फेस्टिवल तो हो गया, अब जो इस फिल्म फेस्टिवल जो चल रहे हैं इसकी जो खास बात है वो ये है कि लाहौर की बड़ी बड़ी नामवर यूनिवर्सिटियां, जो आप नाम लेना चाहें, आप सोच लें आपके जहन में जो यूनिवर्सिटीज वगैरह आ रही है, इन सब ने फिल्म फेस्टिवल करवाए हैं।
0: सही,
1: लेकिन कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो अपना फिल्म फेस्टिवल सस्टेन कर सके या कर सकी, मैं कहूँगा
0: अभी तक
1: नहीं कर सके। एक करवाया, दो करवाए, बहुत हो गया, तीन करवाए और फिर बंद हो गया। UCP वाहिद यूनिवर्सिटी है, या आई वुड से UCP के साथ FMC वाहिद डिपार्टमेंट है जो अपना फिल्म फेस्टिवल 5 साल से लगातार करवा रहा है, और हर साल इसका जो लेवल है मैं कहूंगा वो अप से
0: अप हो जाता है,
1: अप से अप, मतलब ऊपर से ऊपर जा रहा है,
0: जेंजी की जुबान में ऑरा अप हो जाता है,
1: ऑरा अप होता जा रहा है। लेकिन इसमें नो डाउट हमारी जो टीम है, कोर टीम है, स्पेशली नाम लेके आपको कह सकता हूँ कि सर कामरान इसको टीम के फर्स्ट, जब मैं एज अ स्टूडेंट था तब ही वाज द वन हु चूज मी कि तुम स्टूडेंट्स में रिप्रेजेंट करोगे, वो इस फेस्टिवल की बैकबोन है, जान है, ठीक है। उसके अलावा हमारे डेफिनेटली जो हमारे डीन है उस टाइम पे, वो HOD हुआ करते थे, अब वो डीन है हमारे, तो उनकी इस फेस्टिवल में बहुत ज़ाहिर है एक नज़र आती है, उनकी काविश है, ठीक है, और इसी वजह से ये आज तक फिल्म फेस्टिवल मौजूद है, हर साल हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल भी होगा।
0: ये होता क्या है, फिल्म फेस्टिवल किस तरह अरेंज किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है?
1: जी, फिल्म फेस्टिवल में इस तरह होता है कि जी फिल्म फेस्टिवल में हम पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से नहीं, हम पूरी दुनिया से फिल्म्स मंगवाते हैं।
0: सही।
1: और इसके अंदर कैटेगरी स्टूडेंट्स की होती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स कैटेगरी की फिल्म्स आती है हमारे पास, और खाली फिल्म्स नहीं होती हमारे पास, में दो और कैटेगरीज है, हमारे पास फिल्म की कैटेगरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी है, और हमारे पास म्यूजिक वीडियो की कैटेगरी है, और इन तीनों कैटेगरीज में हमारे पास आती है। पहले हमारी एक इंटरनल कमेटी है जो हमारी कोर टीम ही है बेसिकली, वो शॉर्ट डाउन करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है कि कौन सी फिल्म जो है वो मेजर ज्यूरी के पास जाएंगी। फिर एक ज्यूरी डिसाइड हुई होती है, फिल्म की अपनी ज्यूरी है, हमारे पास बड़े बड़े नाम यहाँ पे जज कर सके, सैयद नूर साहब भी यहाँ पे जज रहे हैं हमारे फिल्म फेस्टिवल के, म्यूजिक में जवाद अहमद साहब रहे हैं हमारे साथ, आजकल हमारे साथ हफीज ताहिर साहब मौजूद हैं ज्यूरी में,
0: बड़े नाम
1: मौजूद हैं, हमजा यूसुफ साहब जो इस टाइम पे मेरे ख्याल से सारे बड़ी बड़ी म्यूजिक वीडियोज पाकिस्तान की, इवन ISPR की जितनी है वो हमजा यूसुफ साहब के पास है, ठीक है, हमारे उसमें वो रहे हैं, ज्यूरी में रहे हैं। अब इस साल की क्या ज्यूरी होती है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, जाहिर है कुछ सरप्राइज भी है जाहिर है, लेकिन जो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर शॉर्ट सिलेक्शन के बाद इनके पास जाती है, एंड फिर उसमें से ये top 3 चूज करके हमें दे देते हैं, और उनको फिर कैश इनाम तक दिया जाता है। बहुत कम फेस्टिवल्स हैं जिसमें इनाम कैश की सूरत में स्टूडेंट को दिया जाए।
0: सही,
1: आप ट्रॉफी दे देते हैं, आप शील्ड दे देते हैं, आप यहाँ पे शील्ड के साथ कैश इनाम भी दिया जाता है, ताकि एक फिल्म, अपकमिंग फिल्म मेकर की हौसला अफजाई भी हो, क्योंकि फिल्म मेकिंग सुनने में बड़ा लगता है कि फिल्म मेकिंग जी फिल्म बना दी, फिल्म में आपका बजट लगता है, आपका पैसा लगता है, तो आप हौसला अफजाई के साथ आपको ये भी आप कह देते हैं कि यार तुमने इतनी मेहनत की है, ये जाहिर उतना पैसा नहीं, लेकिन ये हौसला अफजाई है कि तुम और मेहनत करो। तो फिल्म फेस्टिवल में हमारी ये है। और लास्ट फिल्म फेस्टिवल में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास, क्योंकि 5वां फिल्म फेस्टिवल था, तो हमने ये रखा था 5 इंटरनेशनल फिल्म्स। हमारे पास लास्ट फिल्म फेस्टिवल में 5 बाहर से फिल्में आई थी, जिसमें मैं आपको नाम, हमारे पास रशियन फिल्म आई थी, हमारे पास ईरानी फिल्म आई थी, हमारे पास ब्रिटेन UK की फिल्म आई थी, हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, जबकि उस वक्त हालात बड़े नासाज थे, फिर भी हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, इंडिया से, मतलब इंडियन फिल्म से मुराद है इंडिया से फिल्म आई थी हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास फिल्म आई थी चेक रिपब्लिक से।
0: ओके,
1: ठीक है, और अभी भी हमारे पास एक फिल्म जो कुछ आ रही थी वो जाहिर है थोड़ी डिले हो गई, कोरियन फिल्म्स, अच्छा और वो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि आने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में हम अपनी इंटरनेशनल फिल्म्स की तादाद बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे फिल्म फेस्टिवल इतना फेमस हो चुका है कि लोगों को अब दिसंबर का इंतजार होता है कि दिसंबर आने वाला है, अब कब डेट अनाउंस होंगी और यूसीपी का फिल्म फेस्टिवल किन डेट्स पे होगा ताकि हम अपनी फिल्म सबमिट करें। तो ये यूसीपी के फिल्म फेस्टिवल की बड़ी खासियत है कि हर साल करवाते हैं और हर साल बड़े से बड़ा करवाते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी आप देखेंगे कि पहले से बहुत बेहतर होगा।
0: बिल्कुल, अगर उस हालात में हमें वहां से आ सकती है तो इन हालात में तो हमें बहुत कुछ आ सकता है। और बिल्कुल छठा आई थिंक ये इवेंट है।
1: बिल्कुल इंशाल्लाह इस साल छठा होगा ये, और मैं जैसे पहले भी बोला है मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो छह साल मतलब छठा साल ही अब जो होगा लगातार फिल्म फेस्टिवल करवाएगी।
0: बिल्कुल,
1: और ये ऐसा नहीं है कि ये प्लान होता है, ये पूरा साल की तैयारियां चलती हैं।
0: मैं बिल्कुल यही सवाल करने लगा था कि ये ऐसे तो नहीं हो जाता कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके पीछे जाहिर बात है कुछ तैयारियां शैयारियां भी होती हैं। वो तो जाहिर बात है मीडिया की जो हमारी टीम है फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के, जिनमें हमारे टीचर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं,
1: डेफिनेटली स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। देखें ये फेस्टिवल टीचर्स तो है ही है, देखिए बट ये फेस्टिवल पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट्स ना हो, क्योंकि ये फेस्टिवल करने का रीजन भी स्टूडेंट्स ही हैं। देखिए स्टूडेंट्स को एक फिल्म फेस्टिवल से क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ। जब आपके पास दुनिया जहां से या दुनिया जहां को चलने छोड़ दें, हम अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, आपके पास पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फिल्म्स आती हैं, तो खाली फिल्म्स नहीं आती हैं, आप उन फिल्म मेकर्स को दो दिन इन्वाइट करते हैं, वो सारे फिल्म मेकर्स यूसीपी में आते हैं। जब वो दो दिन के लिए फिल्म मेकर्स यूसीपी में आते हैं तो फिल्म मेकर्स आपस में मिलते हैं, आपस में आइडिया शेयर करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, किसी का कैमरा वर्क अच्छा है, किसी का लाइटिंग वर्क अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई गाना अच्छा बनाता है, कोई गाता अच्छा है, तो आपस में कनेक्ट करके एक टीम बन जाती है और आपको एक फिल्म का माहौल मिलता है। तो एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल का खाली मकसद ये नहीं है कि आपने लोगों का काम दिखाना है, असल में आपने लोगों को मिलाना है। और जब वो मिलेंगे तो एक डेफिनेटली नई चीज प्रोड्यूस होगी और वो पहले से बेहतर होगी, बिकॉज एक टैलेंटेड लोग मिलके काम करेंगे।
0: बिल्कुल, अगर एक बंदा करेगा तो उसमें मे बी के दो टैलेंट्स हो, लेकिन जब 8-10 टैलेंट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो काम जो है उसकी दुनिया और पूरा पाकिस्तान जिस तरह बात की कि वो मुतरिफ होता है। तो सामने कराम आपने यहाँ पे सुना, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और सामीन इकराम आपने यहाँ पे सुना कि किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट खास तौर पे फिल्म को लेके चल रहा है, किस तरह तलबा तलबात के अंदर फिल्म का रुझान बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म वो पिलर हो चुका है इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का, जिसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और बहुत बड़ी एक फील्ड बन चुकी है। तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रोग्राम से सीखा होगा और देखा होगा किस तरह के एक स्टूडेंट्स को एक स्टार्ट से लेकर फील्ड वर्क तक बना के पेश किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने तो इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है। और प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्तिताम को पहुंचता है, अपने मेजबान हमजा अहमद रजा को दीजिएगा इजाजत, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 96 बोरियत को भगा दो।
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: तू है नाल मेरे मैं हर साथ तेरे दस लोकां तू लेना की है तेनू ले चलना

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

कुछ कहूं फिर ये सोचता हूं क्यों ना चुप रहूं।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6.

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: इस हुनर कदा में, इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।